103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून 2026। 5:58 और 31 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। मंगलमय प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 6 बजने वाले हैं, समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम

0: में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 in the morning at Garrison Ground in Sadar. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG, re-examination will be conducted this afternoon. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held from 2 p.m. to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency

हेमांजलि में आज बस इतना ही। अब सुनिए एक और भक्ति में प्रस्तुति मानस गान। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह। संगीत सतीश भाटिया का है।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: मानस गान अभी आपने सुना। 6:30 होने वाले हैं। अब सुनिए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर कोलकाता में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण।
1: चलते हैं जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people.

0: from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए. यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे. इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग. बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं. और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है. पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है.
0: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष.
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ.
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है. इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया. 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया. कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया. आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है. इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री

जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट

we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. Sathiyo, Gita mein Bhagwan Krishna ne yoga ke vishay mein kaha hai, yukta ahar viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta swapna avabodhasya yogo bhavati dukhaha. Arthat, santulit ahar vihar se, santulit kriyao aur karmo se, santulit nind aur jagne se, yog दुखों का नाश करने वाला हो जाता है. ये संतुलन ही योग का आधार है. यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है. लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं. बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको. योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है. योग हमें डू और डोंट सिखाता है. और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है. साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य

मसू कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग

0: शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहाँ पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुँचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग या

0: यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना.
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है. ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं. इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है. हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं.
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए.
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं. पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है. योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की. विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं.
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है. मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है.
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं. और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं.
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है.
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं, ये हमें आपने अभी बताया. हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है. ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से.
0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही गणमान्य

0: अतिथि हैं और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
1: गुरुजी मुनीश शर्मा जी, वीड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस आसना।
2: यस, एक्चुअली आसन को हम इस तरह से समझें कि सीट ऑफ अवेयरनेस, हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुँच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनीश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
2: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है, है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
3: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नज़र आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
3: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
0: जी,
3: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी, मैं गुरु मुनीश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और

0: अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना। योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
1: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
1: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं। जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
0: जी।
1: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
0: जी।
1: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
0: जी।
2: Yes,
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
3: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
3: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
2: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ज़मीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
3: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ

0: लगता है क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he's interacting with them and he's just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं। और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है
0: जी।
1: तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
2: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशकासन।

0: शशकासन का, खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasana.
0: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
1: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज़ वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आँखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है
0: जी।
1: तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन,
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
1: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
0: जी।
1: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
0: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और

0: प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा?
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
0: जी गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर।
0: जी, और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी?
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
0: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर। और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्तासन जो है आप

0: देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी,
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्तासन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
1: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
1: जी।
2: हमारी चित्त की वृत्तियाँ अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियाँ ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं हैं, आपकी वृत्तियाँ ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ख़ास करके मेडिटेशन और ख़ास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इन्हेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपाल भाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे
1: जी। और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं

0: बैठ सकते, वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
1: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामिन युक्तिन सर्वरोग क्षयो भवित, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है, युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरियेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
0: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज़ निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज़ के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज़ निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
1: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: And now the most important of the asanas, that is dhyan or meditation, which is a time for our self-assessment and becoming one with the universe. Dr. Pratima,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
0: जी.
1: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
0: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा।

0: कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें. मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है. सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो. सारी चीज़ें मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा. मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया. तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो जाओगे. और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप हैं, वही शिव हैं, वही अनंत हैं, वही चैतन्य हैं.
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान. और यहाँ पर अब प्रार्थना शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है.
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है और धीरे इसकी धीरे ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं. और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं. तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं. आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है. तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई.
3: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai, to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jin mein जहाँ जहाँ भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे. और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है. तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव

0: बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the honorable prime minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है
0: जी।
2: आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहाँ पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हो ही रही हैं कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही हैं, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती हैं तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती हैं, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम हैं।
0: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र

0: मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
1: Yes, and as Guru Munish Sinhaji mentioned, and as you also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
0: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग

0: किया जाएगा। और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय

0: रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स, मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: वाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
5: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
5: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
4: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत

0: उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग, 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड

0: खंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa Temple from November, reports The Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports The Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। वक्त हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। ये विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणुस्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। वहीं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान सहित प्रदेश के कई स्थानों पर योगाभ्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की नीट पुनः परीक्षा आज देश के 551 शहरों और विदेशों में 14 शहरों में संचालित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। NTA के अनुसार इस परीक्षा में 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। राज्य सरकार ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए HRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र का विस्तारित करने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। शिमला में लोक निर्माण भवन में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आने वाली राज्य सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि कर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं पर ईंधन व बिजली खपत समायोजन अधिभार के रूप में प्रति यूनिट 33 पैसे से बढ़कर हर उपभोक्ता पर औसतन लगभग 125 तक का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। ये थी अब तक की एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। नमस्कार।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ।
4: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
4: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से

0: मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या होगा?
3: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
4: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
4: अच्छा,
3: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
5: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
6: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप FM शिमला के साथ अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत में नरोत्तम कुमार का गाया लोकगीत।

0: लोक संगीत में अभी बस इतना ही।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ और वक्त है फिल्म संगीत का। माय नेम इज खान फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा की आवाजें हैं। गीत लिखा निरंजन ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं दबंग फिल्म से। राहत फतेह अली खान की आवाजें हैं और श्रेया घोषाल की। फैज अनवर ने गीत लिखा, संगीत साजिद वाजिद का।

या महफिल में अभी आपने सुना राय हरी और साथियों को। फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हिम बीट्स।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिमबीट्स लेकर हाजिर हूँ मैं उपमा ठाकुर। आज के हिमबीट्स की शुरुआत पॉजिटिव थॉट के साथ। हमारी प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मन की आवाज की होती है। हम जिम्मेदारी, रचनात्मकता और अलग सोच के साथ अपने मन की आवाज को ताकत दे सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जानकारी के बाद हिमबीट्स के साथ सेगमेंट में आज जानेंगे औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी के बारे में। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगलकारी तथा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है तथा ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। मसाले के रूप में हल्दी की बात करें तो हल्दी एक ऐसा महत्वपूर्ण मसाला है जिसे गोल्डन स्पाइस और स्पाइस ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत की औषधीय फसल है और इसकी खेती विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक रूप से की जाती है। ये न केवल भोजन को रंग और स्वाद प्रदान करता है बल्कि औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेदिक और आधुनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है। हल्दी में पाए जाने वाला मुख्य तत्व करक्यूमिन होता है। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूर्ण हल्दी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक साबित होती है। इसके अलावा घाव भरने, गठिया के दर्द को कम करने, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी ये गुणकारी साबित होती है। साथियों, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रदेश सरकार हल्दी के उत्पादन को विस्तार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और सोलन जिला में इसकी खेती की जाती है। वर्तमान में राज्य में लगभग 2042 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की जा रही है और इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 24,995 मीट्रिक टन है। किसानों को हल्दी की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष से हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है।
1: अगर आज आप हल्दी उगाएंगे जो प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसको ना बंदर खाता है ना नील गाय खाती है, कोई भी नहीं खाता, डर के मारे रहते उससे, वो 150 रुपया किलो सरकार आपसे खरीदेगी। हल्दी आपको कैश क्रॉप के रूप में, अगर किसी की एक बीघा जगह है तो 1,00,000 रुपया आपको मिलेगा एक बीघा जगह में हल्दी उगाने का, सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए पैसा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए।
0: इसके साथ साथ सरकार हल्दी की खपत बढ़ाने, नए बाजार विकसित करने और नए उत्पादों के अनुसंधान की दिशा में कार्य करने के साथ साथ हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में भी ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हल्दी उत्पादक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, अब हिमबीट्स में हम बात करेंगे जीवन में शिक्षा के महत्व की। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है और शिक्षा के बल पर बच्चे प्रगति के आकाश को छू सकते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण और मूल्यों को आकार देने की एक सतत प्रक्रिया है। गुरुकुल प्रणाली से लेकर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक शिक्षा ने समाज को नई दिशा दी है और वर्तमान में वैश्वीकरण और तकनीकी शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो चुकी है। हिमाचल के संदर्भ में बात की जाए तो वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों के फलस्वरूप राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रदेश सरकार शिक्षा से बढ़कर बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखकर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाते हुए पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम, 150 से अधिक CBSE स्कूलों की स्थापना, राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल, विदेशी शैक्षणिक विजिट और शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का समावेशन किया है। बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में क्लस्टर प्रणाली शुरू की गई है, जिससे संसाधनों का साझा इस्तेमाल सुनिश्चित कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, हिमाचल में नौनिहालों के लिए 6,297 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ साथ सरकार बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके पौष्टिक आहार की जरूरतों का भी ध्यान रख रही है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। योजना के तहत नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार उनके इच्छानुसार अंडा या मौसमी फल दिया जाता है। बात अपना विद्यालय योजना की करें तो अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत जिला स्तर से लेकर उपमंडल स्तर के अधिकारी स्कूलों को गोद लेते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की परिकल्पना है कि बच्चों को भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। इस परिकल्पना को साकार करने में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल मील पत्थर साबित होंगे। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए बेहतर खेल अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये स्कूल समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने और भविष्य संवारने का परिवेश उपलब्ध करवाएंगे। सरकार

0: महत्वाकांक्षी डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना से समाज के वंचित वर्गों के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को देश विदेश में शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन प्रदान कर रही है।
1: जो आम परिवार से उठकर व्यक्ति डॉक्टर बनता है और डॉक्टर की फीस है 75,000-1,00,000 रुपया साल की, हॉस्टल की फीस होती है 60,000 रुपया। हमने कहा कि कोई भी आदमी अगर सरकारी नौकरी भी है तो भी वो इतनी फीस नहीं दे पाएगा, उनके लिए एक योजना लेकर आए हम, उसका लाभ उठाइए। 20 लाख रुपए का लोन आपको 1% ब्याज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा। और उसमें आय की सीमा कितनी है? आय की सीमा है 12 लाख रुपया, यानी कि जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम होती है तो उसको 12 लाख रुपए साल में हुआ, 12 लाख से नीचे उसको 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। उसका बेटी डॉक्टर बन रही है, नर्स बन रही है, जेई का कोर्स कर रही है, आईटीआई का कोर्स कर रही है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ कर रही है, फिर आगे पढ़ना चाहती है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो विदेश जाने के लिए भी हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया।
0: साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स चरण 2 की रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश को देश भर में 6ठा स्थान हासिल हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें स्थान से 6ठे स्थान पर पहुँच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश 3रे नंबर पर है। ये प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने प्रचेष्टा 2 की प्रतिष्ठित श्रेणी में जगह बनाई है। साथियों, यहाँ हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को पोषित करने की सुखद प्रयासों में जुटी है। साथियों, हिमबीट्स के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में साझा करेंगे आपके साथ नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हिम बीट्स।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जनजन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे प्राइमरी चैनल आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद यानी कि 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10:00 समय रहेगा लाइव फोन इन कार्यक्रम रिमझिम का। 10:30 पर साहित्य दर्पण। 11:05 पर समूह गान शिक्षा पाठ और 11:30 पर बाल सभा। 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम। 1:10 पर आप सुनेंगे सैनिकों के लिए और 1:30 पर भारतीय सेना देश का गर्व आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:00 समय रहेगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम का और 2:30 पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले 4:20 पर सिरमौरी कार्यक्रम, 4:50 पर महासवि कार्यक्रम, 5:20 पर समय रहेगा किन्नौरी कार्यक्रम का और 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफोर्ड ग्राउंड मैनचेस्टर से ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का मैच का सीधा प्रसारण।
5: 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
6: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
7: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
8: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
10: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का

0: संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समारोह का किया नेतृत्व। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा आज, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। और किन्नौर जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि बागवानी को दिया जा रहा प्रोत्साहन। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और ये किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु से अधिक लचीला होना और 50 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु से अधिक ऊर्जावान रहने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग खोजने में मदद करता है।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष योग 365 पहल के अंतर्गत 100 दिन की ऑनलाइन योग कक्षाओं का आयोजन किया है। कई केंद्रीय और राज्य मंत्री ने इस अवसर पर योग कार्यक्रम में भाग लिया। इधर योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इधर सिरमौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम नाहन के ऐतिहासिक पक्का तैलाब परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप, नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी समेत कई गणमान्य लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। मीडिया से बातचीत में सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को एक नई पहचान मिली है और आज कई देश भारत देश का अनुसरण कर योग की तरफ बढ़ रहे हैं।
2: देश ही नहीं, पूरी दुनिया में 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर इस बात को रखा और उसी का नतीजा रहा कि आज दुनिया भर में आज के दिवस के ऊपर योग का अभ्यास किया जा रहा है।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की

0: गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी।
1: इस बीच कांगड़ा जिला में स्थापित 12 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार ITBP की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
2: नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है की पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर ली और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर एग्जाम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहाँ पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी तकलीफ से ना आए।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला के कसुमटी में बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का कल लोकार्पण करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पार्किंग सुविधा स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए लाभकारी होगी। इस पार्किंग परिसर का निर्माण लगभग 28.5 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है, जिसमें 315 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला को अधिक व्यवस्थित और सुचारू शहर बनाने के लिए राज्य सरकार 246 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत यूटिलिटी डक्ट प्रणाली का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर की सौंदर्यात्मक छवि को बढ़ाने के लिए शहर में केबलों को भूमिगत किया जा रहा है। इससे न केवल शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। किन्नौर जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर किसानों को मिट्टी संरक्षण और वैज्ञानिक बागवानी की जानकारी दे रहे हैं। कृषि व बागवानी विभाग और आत्मा परियोजना के सहयोग से संचालित ये अभियान जिले की कृषि और बागवानी विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अभियान के तहत जून माह के अंत तक जिले के 30 से अधिक गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, बागानों की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित करना है। केंद्र शार्बो द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत जिले के 3 विकास खंडों कल्पा, पू और निचार में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने किसानों को बिना मिट्टी परीक्षण के रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बचने की सलाह दी है, साथ ही गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने का जोर दिया है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने स्पीति के सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन की जानकारी ली। इस दौरान युवाओं ने ITBP के साथ योग सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने स्पीति के सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन को करीब से जाना। इस दौरान युवाओं ने ITBP के साथ योग सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां उन्हें अनुशासन और बुनियादी सुरक्षा तकनीकों की जानकारी दी गई। युवाओं ने राजकीय उच्च पाठशाला लालुंग में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के प्रति सेवा और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: किन्नौर जिला परिषद की महत्वपूर्ण सीट पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। कल्पा वार्ड से निर्वाचित हकीम नेगी को आम सहमति से जिला परिषद किन्नौर का अध्यक्ष और रिब्बा वार्ड से धनमाला नेगी को उपाध्यक्ष चुना गया। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दोनों नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नव निर्वाचित अध्यक्ष हकीम नेगी ने कहा कि परिषद के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और

0: और जिले के समग्र विकास के लिए सभी सदस्यों को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और नीट पुनर्परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, कड़ी सुरक्षा में नीट पुनर्परीक्षा आज। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हमीरपुर में आज योग करेंगे मुख्यमंत्री। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, पीडब्ल्यूडी कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। दिव्य हिमाचल लिखता है, हिमाचल के 9 लाख किसानों को मिले 2,000 रुपये। अमर उजाला ने हाईकोर्ट के हवाले से एक अन्य सुर्खी दी है, पंचायत के प्रमाण पत्र भवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं। भूकंप के प्रति संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन निर्माण पर सरकार को फटकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समारोह का किया नेतृत्व। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। और किन्नौर जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि बागवानी को दिया जा रहा प्रोत्साहन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
4: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ लेकर हाजिर हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम में। हर जगह की अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल तो देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है। थोड़ी ही दूरी पर आपको कोई ना कोई मंदिर मिल ही जाता है। यहाँ पर हर कोने में भगवान का वास है, ऐसी लोगों की आस्था है।

तो आज हम आपको जानकारी देंगे मसरूर मंदिर, मसरूर रॉक का टेंपल, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में व्यास नदी की घाटी में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है। 8वीं शताब्दी में बना ये अद्भुत संरचना उत्तर भारतीय नागर शैली का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। कहा जाता है इसे कांगड़ा के राजा यशोवर्धन द्वारा बनाया गया था।

ये मंदिर 15 से 19 मंदिरों का एक समूह है, जिन्हें मुख्य चट्टान को बिना तोड़े तोड़े या जोड़े काटकर तराशा गया है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां विराजमान हैं, लेकिन इसके नक्काशी में शिव, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र सहित कई वैदिक देवताओं को भी दर्शाया गया है।

सदियों तक गुमनाम रहने के बाद इस प्राचीन धरोहर को पहली बार 1875 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खोजा गया था और 1913 में हेनरी शटलवर्थ की रिपोर्ट के बाद ये दुनिया के सामने आया। मूल मंदिर बहुत ही भव्य था, लेकिन 1905 में आए भीषण कांगड़ा भूकंप के कारण इसे भारी नुकसान हुआ और इसकी कई मूर्तियां और कलाकृतियां नष्ट हो गई थीं।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वक्त हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और ये किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु से अधिक लचीला होना है और 50 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु से अधिक ऊर्जावान रहने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग खोजने में मदद करता है। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणुस्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला के कसुमटी में बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का कल लोकार्पण करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पार्किंग सुविधा स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए लाभकारी होगी। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने स्पीति के सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन की जानकारी ली। इस दौरान युवाओं ने आईटीबीपी के साथ

0: साथ योग सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया। केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अब चेहरे के मिलान से ही छात्रवृत्ति मिलेगी। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। कल सुबह 6:57 पर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: 103.7 MHz पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। और आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद यानी कि 10:30 पर आप सुनेंगे साहित्य दर्पण।

0: रात 9:30 पर ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन और 10 आप लुत्फ उठाते हैं गजलों का। मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ 10 हैं और ये वक्त है झनकार कार्यक्रम का। खट्टा मीठा फिल्म का गीत चलिए आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। गुलजार ने गीत लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

0: जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए अब आपको सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत। हंसराज हंस की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निःशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की

0: प्यार वो मीठा फल है जो किसी को दिया जाए तो सबसे बड़ा गिफ्ट है, और किसी से मिल जाए तो सबसे बड़ा सम्मान।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत आशा भोसले अभिजीत की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल जतिन ललित का संगीत।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: झनकार में आज बस इतना ही।
1: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर आप सुनिए साहित्य दर्पण में हितेंद्र शर्मा से काव्य पाठ।

0: नमस्कार, साहित्य दर्पण कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। कविता शब्दों के ताने बाने से निकली वह अद्भुत मखमली चादर है, जिसका हर रंग भावनाओं से महकता है और जीवन की विविधताओं को दर्शाता है। तो आइए आज कार्यक्रम में सुनते हैं हितेंद्र शर्मा से उनकी कविताएं।
1: नमस्कार, कविता का शीर्षक है माँ जो कहती थी। माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी, अपनों से भी दुख पर सदा चुप रहती थी। जमाने की उपेक्षा या अपनों से तिरस्कार, चेहरे पे मुस्कान लिए चुपचाप सहती थी। माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरे हैं लोग। तुम अच्छा ही बनना, सबका भला करना। पीड़ा के सागर में मोती ढूंढ लाती थी माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। अंतर मन के भावों को कैसे पढ़ लेती थी, अंतर मन के भावों को कैसे पढ़ लेती थी। संकट में नए मार्ग हर बार गढ़ लेती थी माँ। गंगा थी नदी सी, झर झर बहती थी। माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। परंपराओं के पतझड़ को सदा समेटती थी, सूखे पौधों को भी हरा करना जानती थी। माँ सुगंध हरियाली की उम्मीद जगाती थी। माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। घर की दीवारों पर सभ्यताओं के चित्र, संस्कृतियों का द्वार भावनाओं से सजाती थी। मकान को घर, घर को मंदिर बनाती थी माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। संबंधों का ताना बाना प्यार से सिखाती थी, अपनेपन का भाव हृदय में दुलार से जगाती थी। रिश्तों की गहराइयों में जीवन सरल बनाती थी माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। चेहरे की झुर्रियों में भी घाव छुपा लेती थी, दर्द के आंसुओं को पसीना बता देती थी। अंतस की पीड़ा में भी मुस्कुरा देती थी माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जल ही जीवन। तरन्नुम में प्रस्तुत करूँगा।

हिमालय का मंजर दहल जाएगा, सर्दियों में बर्फ के निशान भी नहीं, सदियों से इन पहाड़ों में रिमझिम हुई चांदी सी बर्फ की चादर बिछती रही। बादलों का यूं फटना प्रलय हो गया, प्रकृति रूठ जाएगी सोचा न था। पानी बारिश का बेकार बहता रहा, टैंक का पानी भूमि में रिसता रहा। आई बरसात मिट्टी बहा ले गई, पानी को रोकना हमने सीखा नहीं। छत से पानी जो टपका

भी गमले में उगने लगे, पेड़ गिरते गए, आरी चलती रही। स्मार्ट बनने के चक्कर में सब लुट गया, पहाड़ की रानी का वो हुसन छिप गया। चक्र टूटा तो बिगड़ेल मौसम हुआ, वायु जल फसलों में जहर

अपन घटों को तो नल खा गए, जल का संकट हुआ, हमने सोचा न था शिव का तांडव हुआ, सीख

का मंजर पसरता गया, नदियों को माँ का दर्जा दिया तो सही, कूड़ा कचरा उसी में मिलाते रहे, जल के स्रोतों की नियमित सफाई रहे, जल ही जीवन है नारा लगाते रहे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जल बचा लेना। पहाड़ों की बर्फ पिघली तो नदियां सूख जाएगी, पहाड़ों की बर्फ पिघली तो नदियां सूख जाएगी, पवन जल के प्रदूषण से ये धरती रूठ जाएगी, जमी से पानी के चश्मे बावड़ियां लापता हो गई, जमी से पानी के चश्मे बावड़ियां लापता हो गई, न जाने झील झरने कूले नाले सब कहाँ खो गए, कहीं तो कुछ कमी आई हमारी सोच में, वरना ये नदियां झरने झीले मन्नते सब पूरी करते थे, छतों का पानी क्यों बहता रहे बेकार नाली में, छतों का पानी क्यों बहता रहे बेकार नाली में, बनाकर टैंक पानी को सहेजे बात बन जाए, बिना पानी नहीं जीवन हर एक बूंद अमृत है, बचा लो पानी की हर बूंद को जल है तो जीवन है, अभी भी वक्त है कुछ सोच लेना फिर न पछताना, अभी भी वक्त है कुछ सोच लेना फिर न पछताना, वरना पीहू के जैसे पीहू पीहू करके मर जाना, जो चाहो इंस्टा पे पानी के किस्से पोस्ट कर लेना, जो चाहो इंस्टा पे पानी के किस्से पोस्ट कर लेना, लगाना फार्मूला विज्ञान का पानी बना लेना, दो बूंद

नहीं तो आज वादा करके जाना, जल बचा लेना। नहीं तो आज वादा करके जाना, जल बचा लेना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, तुम प्रियतमा मन मीत हो। तुम प्रियतमा मन मीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। चितचोर की भगती तुम ही, तुम राधिका की प्रीत हो। विषपान का प्याला तुम ही, वरदान की हाला तुम ही। तुम प्रकृति की लीला हो, मेरा सा अविचल गीत हो। तुम प्यास हो, तुम रास हो, घनश्याम की अरदास हो। तुम कृष्ण की हो सहचरी, तुम रुक्मणी का त्याग हो। तुम वेद की पावन ऋचा, तुम गीता का सत्ज्ञान हो। तुम पतित पावन मातृशक्ति, ममता का वरदान हो। तुम नारी मन की व्यथा कथा, पुरुषों का स्त्री

विमर्श हो, तुम तो पुनीता हो सुनीता, प्रेमी मन का विहान हो। अगली कविता का शीर्षक है मंजिल। रिश्ते सवारने के इस अनचाहे फेर में तुम, रिश्ते सवारने के इस अनचाहे फेर में तुम, कहीं खुद बिखर न जाना, बस इतना याद रखना। माना तुम्हारी मंजिल कुछ और होगी, लेकिन आवाज दी तुम्ही ने हाथ थामा। अपनी वफाओं ने ही कुछ तो खता की होगी, वरना यूं कोई अपना दिल तोड़कर ना जाता। सुख दुख में साथ देना, अपना दर्द बताना, फिर अपना हक जताना, ख्वाबों में याद आना, तुमसे हमारा मिलना नादानियां है दिल की। दिल ने जो कहा वो हादसा नहीं था, पूछेगा जब जमाना तो हाले दिल सुनाना। लाखों मिले हैं रहबर, गुजरा बहुत जमाना। अगली कविता का शीर्षक है पापा की चौखट पर बेटियां। पापा की चौखट पर बेटियां बतियाती इतराती है, पापा की परियां बेटियां शहजादी बनभाती है। कभी पिता के सर पर बैठी माँ को डांट सुनवाती है, मम्मी की कदकाठी पाकर सहेलियां बन जाती है। घर में रहे तो हंगामा हो, बाहर की चिंता सताती है, अंधेरे तक लौट के आना क्यों माता समझाती है। घर ना लौटे वक्त बेटियां चिंता बढ़ सी जाती है, सही सलामत बेटी आए माता खुशी मनाती है। पिता की उम्मीदों पर जब बेटी आसमां छू जाती है, मत पूछो पापा की परियां खूब नाटियां गाती है। नाम कमाए बेटी जग में खुशियों का पारा वार नहीं, सबकी चहेती बन जाती है, सबकी दुआएं लेती है। पापा की परियों को ऐसा खुला आसमां देना, गगन छुए तारों को चूमे पंख फैलाए उड़ने देना। अगली कविता का शीर्षक है काश। काश ऐसा कोई जहां होता, काश ऐसा कोई जहां होता, जिसमें ना कोई मकान होता, जमीन पे होते सबके कदम, सर पे खुला आसमां होता। प्रेम की भाषा बोली जाती, प्रेम की भाषा बोली जाती, सत्य का ही सम्मान होता, सोना चांदी सब बेमोल होते, हीरे से चमकता इंसान होता। कुरीति विकृति की बलि होती, भावना से प्रसन्न भगवान होता, धन दौलत सब पाप कहलाता, जाति तृष्णा पद बिन इंसान होता, काश ऐसा कोई जहां होता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हिंदी सबकी साझी भाषा। हिंदी सबकी साझी भाषा, कानों में मिश्री खोले, सबको जोड़े गले लगाए, वैर भाव पल में तोड़े। जन भाषा संपर्क बढ़ाती, ज्ञान बांटती जाए, औ से अनार ज्ञौ से ज्ञानी, शब्दों का बोध कराए, सबके शब्द समाए इसमें, कोई किसी से वैर नहीं, सबको प्रेम से गले लगाया, इसका कोई गैर नहीं। पंचायत से यूएनओ तक सिंहासन की वाणी है, देवनागरी लिपि में सोहे ये वैभव अमर कहानी है। नानी दादी के किस्सों में लोरी में गीतों गजलों में, प्रांत प्रांत की अपनी भाषा, यह तो सबकी रानी है। आज़ादी के अमर तराने गाने वाली हिंदी है, आज़ादी के अमर तराने गाने वाली हिंदी है, भारत के मस्तक पर भाती श्रृंगार सजाती बिंदी है। गीता वेद पुराण इसी में, बाइबल और कुरान इसी में, इसका साहित्य अमर अनोखा, कालजयी बन इतराता, दुनिया का सरताज देश है हिंदी का रखवाला, आओ हिंदी को अपनाएं, हिंदी हिंदुस्तान हमारा। कविता का शीर्षक है गांव की माटी। गुनगुनी धूप पर हरी घास का बिछोना, गुनगुनी धूप पर हरी घास का बिछोना, बेफिक्री के आलम में खुले आसमां तले सोना, दिल से हंसना दिल से ही रोना, क्षणिक नाराजगी अटूट बंधन का होना, कंटीले पथ पर चलना, गीली मिट्टी का खिलौना, कंदमूल बड़े चाव से खाना, गुफाओं को घर बनाना, कपड़े की गेंद बनाकर खेल की

दुनिया में खो जाना, कागजी कश्ती और फूल बनाकर आसमां में अपने जहाज उड़ाना, गिल्ली डंडा लंगड़ी खो खो कबड्डी कुश्ती में दाव लगाना, तंदरुस्ती गांव गली मोहल्ले कंचे कट्टे पोशंपा खेलते जाना, मिट्टी की सुंदर लिपाई रंगोली से आंगन सजाना, ढेर सारे चित्रों की नकल उतारना, दीपमाला से हर त्योहार मनाना, तख्ती सुखाना, लेप लगाना, स्लेट पेंसिल से हुनर दिखाना, नीली काली स्याही की पुड़िया द्वात भरना और कलम बनाना, कविता सुनाना, पहाड़े गुनगुनाना, पढ़ना लिखना कंठस्थ कर जाना, हर पल मुस्कान चेहरे पर रखना, पगडंडियों में गिरते फिसलते चलते जाना, दूध दही लस्सी घी मक्खन गौ माता के संग चरागाह जाना, सब्जी फल चहुओर हरियाली बांसुरी की मधुर ध्वनि में झूम जाना, माँ और मिट्टी सबसे न्यारी जीवन का इनसे बंध जाना, चारों ओर स्नेहिल मौसम गुरुजनों का सानिध्य पाना, पिता के साये में जीना, पिता के साये में जीना, ममता के आंचल में सोना, गांव की माटी से जुड़कर मेरा दिल चाहे फिर से बच्चा होना। कविता का शीर्षक है उन्मुक्त परिंदे। ए गगन के उन्मुक्त परिंदे, वसुधा की बेकसी क्या जाने, वट वृक्ष सींचे घनेरे निर्जल बंजर ना पहचाने, कंठ का कीर्ण है जीवन कूप मंडूक बने ज्ञानी, मर्मज्ञ लज्जित यहाँ बसंत में नीरस जवानी, ए मगरूर मत उड़ गुमान, ए मगरूर मत उड़ गुमान में गुरुत्व धर्म धरा का जहान। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चिड़िया। हर दिन सुबह सवेरे छत पर उड़ती गाती नन्ही चिड़िया, दाना चुगती खूब चहकती पानी पी उड़ जाती चिड़िया, तिनका तिनका चुन कर लाती नया घोंसला बुनती चिड़िया, अंडे देती बच्चे पालती चोंच में दाना लाती चिड़िया, सुबह सवेरे सहेलियों संग फुरफुर उड़ जाती चिड़िया, डाल डाल पर खूब फुदकती डाल डाल पर खूब फुदकती प्रेम का गीत सुनाती चिड़िया, दादी नानी संग बतियाती बच्चों के मन भाती चिड़िया, जो भी दाना पानी देता सबको खूब रिझाती चिड़िया, कोई पकड़ना उसको चाहे दूर दूर हट जाती चिड़िया, गर्मी का मौसम मन भाए पानी में मौज मनाती चिड़िया, कोयल सी मीठी बोली सुन खुशी खुशी इतराती चिड़िया, झुंड में उड़ती गगन चूमती धरती को स्वर्ग बनाती चिड़िया। मेरी कविता का शीर्षक है आओ फिर से खुशी मनाए। हिम आच्छादित धवल गगन से उगते सूरज की किरणें, जाने को हेमंत शिशिर आतुर आने को वसंत है, धरती का सिंगार करें आओ फिर से खुशी मनाएं। हिय में सुमिरन देवधरा का मन में हो उल्लास गगन सा, मैत्री भाव से खेले कूदें द्वेष भाव में जश्न मनाएं, आओ मिलकर खुशी मनाएं। अपना देश सभी से प्यारा, अपना देश सभी से प्यारा, बापू के सपनों का न्यारा, बलिदानी अपनों का भारत, विश्व पटल पर बढ़ता भारत, तन मन धन सब इस पर वारे, आओ सब जन मिलकर गाएं, आओ इसके प्रीत करें सब, सब मिलकर गाएं खुशी मनाएं, वंदे मातरम के नारों से धरती अंबर खूब गुंजाएं, वीर भूमि को तिलक लगाएं, वीरों का सम्मान करें हम, एक हाथ में शस्त्र धारें एक हाथ में शास्त्र हो, घर आंगन में सजे तिरंगा आओ फिर से देश सजाएं, नई उमंगे नई तरंगे नई नवेली ऋतु का स्वागत, जीवन में उल्लास नया हो झूमे धरती महंगे आंगन, तुम भी आओ हम भी आएं सब जन रंगले सपने सजाएं। कविता का शीर्षक है

0: निष्फल, निरुत्साहित नहीं निष्फल हूं, निरुत्साहित नहीं निष्फल हूं, आज ना सही लेकिन कल हूं, निश्चित निश्चिल और अड़िग हूं, निष्काम कर्म की पहचान हूं, वजूद ऐसा मरते दम जारी हूं, भाग्य की रेखा पर भी भारी हूं, हौसलों की उड़ान से चलता हूं, हवाओं के लिए अजब बीमारी हूं। कविता का शीर्षक है बढ़ती उम्र का सुकून। जब शब्द ना समझे कोई बार बार तो बातें दोहराना छोड़ दीजिए। जब शब्द ना समझे कोई बार बार तो बातें दोहराना छोड़ दीजिए। बचपन से अब तक समझाया बहुत, अब दिल को थकाना छोड़ दीजिए। हर किसी से मेल बिठाना जरूरी नहीं, हर किसी से मेल बिठाना जरूरी नहीं, जो नहीं समझे उनको समझाना छोड़ दीजिए। हर छोटी बात पर मन को उलझाना, अपने सुकून को गवाना छोड़ दीजिए। जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं, जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं, उनकी परवाह दिल में बसाना छोड़ दीजिए। खुद से प्यार करें, सपनों को सहेजें, औरों के मत पर चलना छोड़ दीजिए। भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा, दोनों ही जीवन को उलझाते हैं। भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा, दोनों ही जीवन को उलझाते हैं। जो हाथ में नहीं उस पर जोर लगाना, बेवजह कोशिश करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का स्वाद लीजिए, बढ़ती उम्र में जीवन का स्वाद लीजिए। हर दिल को बोझिल बनाना छोड़ दीजिए। उम्मीदों का भार अगर भारी लगे, उम्मीदों का भार अगर भारी लगे, तो खुद को संभालना सीख लीजिए। हर सांस का जश्न मनाइए, हर सांस का जश्न मनाइए, हर पल में आनंद भर दीजिए। बेकार की चिंताओं को त्यागिए, जीवन को सरल और सुंदर बना दीजिए। कविता का शीर्षक है सुनो दोस्त। सुनो दोस्त, यदि दुनिया की भारी भीड़ में खुद को कभी अकेला पाओ तो किसी को आजमा लेना और उसका दामन थाम लेना। यदि दुनियादारी की आंधी में उखड़ने लगे पांव तो बेल की तरह किसी मजबूत तने से लिपट जाना। यदि बेगाने हो जाएं कुछ अपने और चुभने लगे कांटों की तरह, तुम फूलों की तरह मुस्कुराते रहना। अगर कन्नी काटने लगे कुछ अपने, तंज कसने लगे दोस्त, हाथ मिलाने लगे दुश्मन, तो अपना रास्ता बदल लेना। प्रिय श्रोताओं, ये थी मेरी कविताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हितेंद्र शर्मा से उनकी कविताएं। इसी के साथ साहित्य दर्पण कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ों में जॉनी मेरा।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय

0: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इधर योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को दुनिया के 189 देशों ने अपनाया है।
2: पूरा भारतवर्ष की जो परंपरा है उसको पूरा विश्व अपना रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 189 कंट्रीज में 2014 से ये प्रयास शुरू हुआ, तो आज भी प्रधानमंत्री जी कोलकाता में योगा फॉर एंटी एजिंग उससे को लेकर के कर रहे हैं। यही है कि स्वस्थ जो शरीर रहता है, स्वस्थ मन का परिचायक रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने परिवार से लेके, समाज से लेके, हर घर में योगा का प्राथमिकता दें और हमारी जो परंपरा है वो भी जीवित रहे।
0: राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और योगाभ्यास किया। इधर सिरमौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम नाहन के ऐतिहासिक पक्का तालाब परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप, नाहन के विधायक सोलजय अलंकी समेत कई गणमान्य लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। मंडी में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त गुरु सिमर सिंह ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ और संतुलित जीवन अपनाने की लोगों से अपील की। कुल्लू जिले में हुए योगाभ्यास कार्यक्रम में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर 500 से अधिक लोगों ने नशा मुक्त समाज और स्वस्थ जीवन शैली के निर्माण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला के कसुमटी में बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का कल लोकार्पण करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पार्किंग सुविधा स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए लाभकारी होगी। इस पार्किंग परिसर का निर्माण लगभग 28.5 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है, जिसमें 315 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी।
0: किन्नौर जिला परिषद के कल्पा वार्ड से हकीम नेगी को आम सहमति से जिला परिषद किन्नौर का अध्यक्ष और रिब्बा वार्ड से धनमाला नेगी को उपाध्यक्ष चुना गया है। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दोनों नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम शिमला पर। 11:05 हुए हैं और हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर ढेर सारे गाने, कुछ नए तो कुछ पुराने। साथ ही सुनवाएंगे आपको हिमाचल के लोकगीत भी और कार्यक्रम युववाणी में कुछ खास लेकर आएंगे अपने युवा साथियों के लिए। समय समय पर आपको अवगत करवाते रहेंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से, समाचारों के माध्यम से। तो बस आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सफर का आगाज करते हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। लीजिए सुनिए झनक झनक बाजे पायल फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत वसंत देसाई का।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में माया फिल्म का गीत।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। लीजिए सुनिए सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में गोकुल का चोर फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में लीजिए सुनिए उजाला फिल्म का गीत, गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल

0: शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में दिल दे के देखो फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के, संगीत उषा खन्ना का।

0: अभी आप सुन रहे थे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का

0: ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
0: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 11:30 हुए हैं। लीजिए पेश है लोक संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बलदेव सांख्यान की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए हीना शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

लोक संगीत में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को

0: राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

0: प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodak and INS Agraye in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today, India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी

0: conduct of the exam. Union Home Minister Amit Shah paid tribute to Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS founder Dr. Keshav Baliram Hedgewar on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah remembered Dr. Hedgewar for establishing the Sangh and spreading the ethos of nation first and cultural nationalism among the people. In cricket, India A were 221 for 3 in 28 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last in. And that is the end of this news bulletin.
1: MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण. 12:10 हुए हैं. लीजिए पेश है फिल्म संगीत. फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की आवाज़ों में दिल तेरा आशिक फिल्म का गीत. गीत के बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का.

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए सुनिए ज्वाली मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाज़ों में आतिश फिल्म का गीत, गीत के बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का,

0: फिल्म संगीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: लीजिए बहनों, हम हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। आज के इस सफर में मैं हूं आपकी रेडियो सखी हर्षा शर्मा
1: और मैं सीमा ठाकुर।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बहनों, योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की साधना भी है।
0: जी बिल्कुल, इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानपूर्वक वृद्धावस्था के लिए योग।
1: जी बहनों, देखिए, यदि हम योग दिवस के इतिहास की बात करें तो योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी अमूल्य धरोहर है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकाकार करना। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है।
0: जी, योग का इतिहास 5 वर्ष से भी पुराना माना जाता है बहनों, और प्राचीन ऋषि मुनियों ने तप, ध्यान और साधना के माध्यम से इस अद्भुत विद्या को विकसित किया, और बाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना कर योग की को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, इसीलिए उन्हें योग का जनक भी कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल बहनों, समय के साथ योग भारत की सीमाओं से पूरी दुनिया में लोकप्रिय होने लगा। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 170 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था।
0: जी, और 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित भी किया। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक करोड़ों लोगों ने योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली को की ओर अपना कदम बढ़ाया है।
1: जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र एक दिन नहीं है, बल्कि उस महान परंपरा का स्मरण करने का दिन है जिसने हजार वर्षों से मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाया है, और वो परंपरा है योग।
0: जी बहनों, अगर हम एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं जहाँ शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुष्ट हो, तो उसका एकमात्र उपाय योग ही है।
1: बिल्कुल, आज दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है।
0: जी जी,
1: सुविधाएं हैं, तकनीक है, संसाधन है, लेकिन हर्षा फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है उसका एक जो शांति उसके जीवन में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन से बाहर नज़र आती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि मानो मुस्कान भी कहीं खो सी गई है। वो दिन भर भागता रहता है पर ये नहीं जानता कि उसे पहुँचना कहाँ है।
0: जी बिल्कुल, ऐसे में योग हमें रुकना सिखाता है, स्वयं को समझना भी सिखाता है बहनों, और अपने भीतर झांकना भी सिखाता है। योग केवल शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं है, योग स्वयं को जोड़ने की प्रक्रिया है। शरीर को मन से और मन को आत्मा से जोड़ने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है।
1: बिल्कुल बहनों, आज तनाव, अवसाद और अनिद्रा के साथ साथ बहुत सी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। छोटी उम्र के बच्चे भी तनाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में केवल योग ही एक विकल्प के रूप में जो है हमें नज़र आता है, जो आज हमारी आवश्यकता भी बन गया है।
0: जी, योग हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन

0: हो, क्यों ना ये परिस्थितियाँ बहुत आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा ही कठिन
1: जी
0: होती जा रही है, तो मन को स्थिर कैसे रखना है। प्राणायाम हमें नई ऊर्जा देता है, ध्यान हमें मानसिक शांति देता है, और योगासन हमें शारीरिक शक्ति प्रदान करता है।
1: बिल्कुल, खास तौर पर हम अपनी बात करें तो महिलाओं के लिए तो योग का महत्व और भी अधिक बन जाता है। बहनों, एक महिला पूरे परिवार की धुरी होती है,
0: जी
1: वो पूरे परिवार का ख्याल रखती है। लेकिन हर्षा, आपने देखा होगा कि अक्सर जब स्वयं की बात आती है तो महिला अपने लिए समय निकालना ही भूल जाती है।
0: जी जी जी
1: योग उसे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है।
0: जी और कहा भी जाता है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, सशक्त परिवार सशक्त समाज, और सशक्त समाज तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है।
1: जी हर्षा, देखिए बातें तो और भी होती
0: जी
1: रहेगी,
0: बिल्कुल
1: और हम प्रतिदिन ऐसे कौन से व्यायाम है, कौन सा ऐसा योग के अभ्यास है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, इस बारे में भी बहनों से बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गीत।
0: जी

0: मैं नो योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी विषय है। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि योग भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व जो ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान विश्व को स्वस्थ जीवन मार्ग दिखा रहा है।
1: जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी जड़ों को ना भूलें।
0: जी,
1: योग हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी जीवन शैली है। आज इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रतिदिन योग करेंगे, अपने परिवार को योग से जोड़ेंगे, बच्चों को योग के प्रति प्रेरित करेंगे और स्वस्थ भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे।
0: जी बहनों, जब शरीर स्वस्थ होता है तो जीवन सुंदर लगता है, और जब मन शांत होता है तो संसार सुंदर लगता है, और जब आत्मा प्रसन्न होती है तो हर दिन उत्सव बन जाता है। योग हमें वही सुंदरता, वही शांति और वही उत्सव प्रदान करता है। हमें योग को जीवन का जो है एक योग को हमें अपनाना चाहिए अपने जिंदगी में, क्योंकि ये आवश्यकता भी है आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें।
1: जी बिल्कुल। तो बहनों देखिए, हमने आपसे बात की थी कि हम आपको कुछ ऐसे योग बताएंगे जिनको हम प्रतिदिन कर सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो बहनों, आज हम सभी ये जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाले या फिर कठिन व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सरल योगाभ्यास से भी स्वयं को स्वस्थ रख सकती हैं।
0: जी, आप सबसे पहले जैसे कि गहरी श्वास की हम बात करते हैं, तो ये आपको प्रतिदिन 2 मिनट करना है। इसके लिए आप सुखासन या कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें, कुछ क्षण रुकें और अपनी जो सांस को है कुछ थोड़ी देर के लिए हमें रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा प्रतिदिन करने से तनाव कम होता है, मन

0: शांत होता है और फेफड़े मजबूत बनते हैं।
1: जी, इसी तरह अगर हम आसन की बात करें तो बात आती है ताड़ासन की। आपको इसके लिए सीधे खड़े हो जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, पंजे के बल खड़े होकर पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। 10 से 15 सेकेंड यहीं इसी अवस्था में रुकें और सामान्य स्थिति में इसके बाद आ जाएं। यदि आप बहनों प्रतिदिन 2 मिनट इस आसन को करती हैं तो इससे शरीर में संतुलन आता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और लंबाई बढ़ने में भी इससे मदद मिलती है।
0: जी, बात करें वृक्षासन की तो सीधे खड़े हो जाएं, एक पैर को दूसरे पैर की जांघ पर रखें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़े संतुलन बनाए रखें और फिर यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। अगर आप में ये आसन 2 मिनट तक करती हैं तो इससे एकाग्रता और संतुलन बढ़ता है।
1: जी, बात करते हैं भुजंग आसन की। बहनों, इसके लिए सबसे पहले पेट के बल आपको लेट जाना है।
0: जी,
1: हथेलियां कंधों के पास रखें, धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर की ओर उठाना है, कुछ सेकेंड इसी अवस्था में रुकना है और फिर यही क्रिया आपको दोहराते रहना है। इस क्रिया को अगर आप प्रतिदिन करती हैं तो इससे आपको कमर और रीढ़ की मजबूती मिलती है।
0: वज्रासन की अब बात करते हैं तो घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठे बहनों और हाथ घुटनों पर रखें। सामान्य श्वास लेते समय इसे प्रतिदिन करने से पाचन शक्ति बेहतर होती है और ये भोजन के बाद भी किया जाता है। अनुलोम विलोम भी इसी में ही आता है।
1: जी, तो अगर बात करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो बहनों इसके लिए दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नाक का जो छिद्र है उसको आपको बंद करना है, बाएं छिद्र से सांस लेनी है, अनामिका से अब आपको बायां छिद्र जो है वो बंद करना है और फिर दाएं छिद्र से धीरे धीरे सांस छोड़नी है। ऐसा 5 मिनट तक दोहराना है। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है।
0: जी, ध्यान, आराम से बैठें, आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, मन भटके तो धीरे धीरे से वापस श्वास पर लाएं। इससे मन शांत, सकारात्मक और एकाग्र बनता है। बस इसे रोजाना 5 मिनट करना है।
1: बहनों, बात करें अगर हम तितली आसन की, जो बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक भी माना जाता है, इसके लिए सबसे पहले ज़मीन पर दरिया योगा मैट बिछाकर आपको सीधे बैठ जाना है, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेना है, अब दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है और एड़ियों को शरीर की ओर जितना सहज हो सके खींच लेना है।
0: जी, अब दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें, पीठ और गर्दन सीधी रखें। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करें, ठीक वैसे जैसे तितली अपने पंख फैलाती है। सांस सामान्य रखें और बिना किसी झटके के 20 से 30 बार इसे करें। धीरे धीरे घुटनों को स्थिर करें और विश्राम मुद्रा में आ जाएं।
1: बहनों, अगर आप ये प्रतिदिन करती हैं तो इससे जांघों, कूल्हों और घुटनों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत बनती हैं, लचीली बनती है। इससे रक्त संचार जो है वो बेहतर होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इसे बहुत ही लाभदायक समझा जाता है। यदि घुटनों या कूल्हों में दर्द हो या फिर चोट हो तो बहनों ये आसन आप ना करें, क्षमता के अनुसार ही इस आसन को करें।
0: जी बहनों, योग हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। योग कोई दवा नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की जीवन शैली है। तो बहनों, करें योग, रहे निरोग, प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर किया गया ये निवेश जीवन भर लाभ देता है।
1: जी।

0: बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर
1: जी
0: पर हम आपसे कह तो रहे हैं कि योग को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है हर्षा, कि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं कि हाँ, हम नियमित रूप से
1: जी
0: व्यायाम
1: जी
0: करेंगे, लेकिन जब हम आज के समय के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये भाग वाली जो सिलसिला रहता है ज़िंदगी का, उसके कारण वो रूटीन कहीं ना कहीं टूट जाता है।
1: जी
0: और ऐसे में अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हों, या फिर हमें घर के काम कई बार इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि जो हमारा रूटीन है वो सही नहीं बन पाता है, तो बहन, अगर आप भी ऐसी समस्या से कभी ना कभी रूबरू होती हैं, तो आज हम आपको ऐसी ऐप्स बताएंगे कि जिनके इस्तेमाल से आप इस रूटीन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। तो उसके लिए आपको जो है

0: करना क्या है कि ये जो ऐप्स है इनको अपने फ़ोन में आपको डाउनलोड कर लेना है।
1: जी, तो हम बात कर रहे हैं योग ट्रैकर ऐप की। मैंने योग ट्रैकर एक ऐसा डिजिटल टूल या मोबाइल ऐप है जो आपके योगासन या योगाभ्यास को ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है और प्लान करने में मदद करता है। ये टूल्स आपको सही तरीके से आसन सीखने, योगा करने के लक्ष्य जो हमने सोचा होता है, जैसे कि वजन कम करना, स्ट्रेचिंग पूरा करना और आपकी दैनिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में भी ये मदद करता है।
0: जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा योग को बढ़ावा देने और शारीरिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए बहुत सारे ऐप्स जो है वो लॉन्च की गई है। उन्हीं में से एक है नमस्ते योगा। मैंने ये ऐप एक व्यापक योग ट्रैकर ऐप है। इसमें आपके आसपास कौन कौन से योग केंद्र हैं और कहां से आपको प्रशिक्षक मिल सकते हैं, इसको खोजने की सुविधा इसके माध्यम से मिलती है। साथ ही ये आपके कदमों और कैलोरी का भी ट्रैक करने में मदद करता है।
1: जी, वैसी ही एक ऐप है वाई ब्रेक ऐप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा बनाया गया है। इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है, जिनको करने से आप तनाव कम करने में ये आपको मदद करता है या फिर आपका जो फोकस बनाए रखने में भी ये मदद करता है।
0: जी बहनों, अगर इसी सिलसिले में हम आगे बात करें तो WHOM योगा भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
1: जी,
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये ऐप जो है वो सुरक्षित और विज्ञापन मुक्त ऐप है। इसमें विभिन्न जो आपकी अवधियों में किए जाने वाले योग अभ्यास है और उसके जो सीखने के सत्र है उनको इसमें शामिल किया गया है, जिसको अपना कर आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं।
1: जी, और योग ट्रैकर के ना सीमा बहुत से जो लाभ भी होते हैं।
0: जी,
1: जैसे कि रिमाइंडर देकर योग करने की ये आदत बनाता है ना।
0: जी,
1: जिस तरह से कि आपको एक याद दिलाता है कि अब आपका योग करने का समय हो चुका है।
0: जी, आप हर हफ्ते में कितने दिन योग करती हैं और कितना समय बिताते हैं, इसका जो डेटा है वो भी आप इसके माध्यम से देख सकती हैं।
1: जी, और लक्ष्य पूरा करने का उत्साह भी ये बढ़ाता है, क्योंकि जब आपको लगता है ना कि हमने कुछ काम करना है, आपको रिमाइंडर बार बार मिल रहा होता है, तो एक लक्ष्य करने का उत्साह जो है वो बढ़ जाता है।
0: जी, इसके साथ साथ जो योग में आवश्यक होता है कि सही मुद्रा और सुरक्षा का ध्यान रखना, तो ये जो ऐप्स है इसमें स्टिक टाइमर और ऑडियो गाइड्स भी होते हैं, जो आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि आपको कब कौन सा आसन करना है और कब सांस लेनी है और कब छोड़नी है।
1: जी, कैलोरी और स्वास्थ्य ट्रैकिंग का भी पता चल जाता है कि योग करते समय कितनी कैलोरी जो है हमारी बर्न हुई है, और हार्ट रेट का भी स्टिक हिसाब ये रखता है।
0: योग ट्रैकर का उपयोग कैसे करना है, तो बहनों जैसे हमने पहले कहा कि इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अपनी पसंद का कोई भी ऐप जो हमने अभी बताया उनको डाउनलोड आप कर सकती हैं, या किसी साधारण फिटनेस बैंड का भी आप उपयोग करके अपना योग सत्र रिकॉर्ड कर सकती हैं।
1: जी, योग ट्रैकर ऐप्स लोगों जो नियमित अभ्यास करने में ये लोगों को मदद करता है, और ये ऐप्स खासकर छात्रों और कामकाजी लोगों और बुज़ुर्गों के लिए, बहनों के लिए बहुत उपयोगी है। और योग ट्रैकर से रोज़ाना योग ट्रैक कर सकती हैं, तनाव कम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली भी अपना सकते हैं।
0: जी,

0: बहनों, स्वस्थ जीवन के लिए योग तो ज़रूरी है ही, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते फिरते या व्यस्त दिनचर्या में हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट में छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतें शामिल करनी बहुत ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हम जो है वो बहुत बार देखते हैं कि हम घर पर खाना बनाने की जगह
0: जी जी
1: पैक्ड जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो है ना, इसकी जगह जो है हम भुने हुए चने,

0: बहनों, स्वस्थ जीवन के लिए योग तो ज़रूरी है ही, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते फिरते या व्यस्त दिनचर्या में हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट में छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतें शामिल करनी बहुत ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हम जो है वो बहुत बार देखते हैं कि हम घर पर खाना बनाने की जगह पैक्ड जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो है ना, इसकी जगह जो है हम भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, मखाने या फिर फल अपने पास रख सकते हैं।
0: जी
1: इसके साथ साथ कुछ अगर हम इस तरह के टिप्स अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि जब भी हम दिन की शुरुआत करें तो पौष्टिक नाश्ते से करें।
0: जी जी जी जैसे कि नाश्ते में जैसे फल, दूध, दलिया, ओट्स भी हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या

0: नमक और चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।
1: बाहर के खाने की जगह अगर आप घर का ताज़ा और साफ भोजन करती हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर होता है।
0: जी, दूध और दही का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।
1: इसके साथ साथ बहनों देखिए, हम जो बात करते हैं पानी पीने की, तो बहुत से लोगों को हर्षा देखिए आदत होती है कि हम खाना खाते हुए भी पानी पी लेते हैं और खाना खाने के बाद भी हम कई बार पानी जो है वो पी लेते हैं। तो कोशिश करें कि खाना खाने के आधे घंटे तक आप पानी ना पिए, आधे घंटे से पहले या आधे घंटे के बाद ही आप पानी पिए। तो इसे भी आप अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें।
0: जी, और सबसे ज़रूरी बात, रोज़ाना जो है योग करें। स्वस्थ आहार के साथ साथ हल्का फुल्का योग भी बहुत ज़रूरी है।
1: जी,

0: बहनों, योग हमें सिखाता है कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न रहना हमारा चुनाव हो सकता है। योग हमें केवल लंबी आयु ही नहीं देता, बल्कि बेहतर जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया।

0: प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrae in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
1: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एफएम शिमला पर। 1:10 हुए हैं एफएम शिमला पर। वक्त है म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। योग से तन स्वस्थ रहे, मन में नई उमंग आए, हर दिन योग अपनाएं, जीवन में खुशियां लाएं। एफएम शिमला की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गीत संगम फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज

0: और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत आरडी बर्मन का

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीजिए सुनिए आया सावन झूम के फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में पारस मणि फिल्म का गीत, गीत के बोल असद भोपाली की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: वो जब याद आ

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का।

अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज़ों में लीजिए सुनिए बागी फिल्म का गीत, गीत के बोल समीर के, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
6: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
5: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
6: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
5: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
6: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम।
8: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
9: अच्छा, इसमें क्या होगा?
8: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
9: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई OTP देना होगा?
8: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या OTP नहीं मांगा जाता।
9: अच्छा,
8: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मुकुल आनंद और अलका याग्निक की आवाजों में सपने साजन के फिल्म का गीत, गीत के बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

0: म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। दोपहर के 2 बजे हैं। एफएम शिमला पर वक्त है सबरंग कार्यक्रम का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

0: सबरंग कार्यक्रम अभी आपने सुना। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक

0: दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार

0: किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन

0: मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 2:30 हुए हैं। FM शिमला से अब प्रस्तुत है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस भेंट वार्ता में भाग ले रहे हैं डॉक्टर भूमेश कुमार, योगाचार्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर, और इनसे चर्चा कर रही हैं समाचार वाचक प्रभा शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई है।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि आज हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, और हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पिछले 12 वर्षों में योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अत्यंत ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी रही है। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही योग केवल भारत तक सीमित न रहकर एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन और जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। उनके इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसे आज दुनिया भर के 193 से अधिक देश मनाते हैं। श्रोताओं, योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन भी प्रदान करता है। योग दिवस पर इस वर्ष का विषय है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हमें बताता है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हर आयु में स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। श्रोताओं, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इस विषय पर बातचीत के लिए आज आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य डॉक्टर भूमेश कुमार जी। डॉक्टर भूमेश कुमार जी, आप वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में बतौर योगाचार्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर भूमेश, आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आपका स्वागत।

0: है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग क्या है और इसके कितने प्रकार हैं।
1: योग भारत की एक प्राचीन कला है, विद्या है
0: जी,
1: और भारत के ऋषि मुनियों ने इसको एक विस्तृत साधना के द्वारा, एक गहन साधना के द्वारा इसको आज इस रूप में पहुंचाया है
0: जी।
1: महर्षि पतंजलि ने योग को सीधे शब्दों में कहा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल करना है, योग है
0: जी।
1: भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में योग की परिभाषा दी है, समत्तमम योग उच्चते, अर्थात मन की अवस्था को सम रखना, बराबर रखना, हार में, जीत में, दुख में, सुख में, कष्ट में, प्रसन्नता में, एक स्थिर अवस्था रखना, वो योग है
0: जी।
1: आदि योगी भगवान शिव को कहा गया है, योग की परंपरा भगवान शिव से आई है और भगवान शिव ने इस परंपरा को कहते कांति सरोवर अर्थात मान सरोवर के किनारे सप्तऋषियों को दिया, सप्तऋषियों के माध्यम से और पूरे संसार में यह योग विद्या आई
0: जी।
1: लेकिन बाद में जब ये साधना बढ़ती गई तो योग के साधकों ने उसको अपने अपने सुविधा के अनुसार इसको अपना अपना सहज नाम दिया
0: जी।
1: जिस प्रकार से जैसे भक्ति का केवल भक्ति को बढ़ावा देना तो उसको भक्ति योग कहा, और जो आज जिस योग विषय की हम बात कर रहे हैं जिसमें आसन आता है, प्राणायाम आता है
0: जी,
1: तो मूल रूप से वो हठ योग का ही भाग है। नियम नियम का पालन करते हुए, यम नियम जो है मानसिक साधना है एक तरह की, अर्थात योग को आप मन अपने आप को कैसे तैयार करना है उसके लिए यम नियम का पालन करते हुए और आसन प्राणायाम की साधना करते हुए अष्टांग योग का वर्णन आता है, और अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है और आसन प्राणायाम षटकर्म ये हठ योग का भाग है
0: जी। तो
1: इस तरह से ये योग के जो अलग अलग प्रकार है, भक्ति योग है, लय योग है
0: जी,
1: इन स्वरों को हम दाएं बाएं जो नाड़ी है इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं
0: जी,
1: जिसको हठ योग कहा गया। हठ योग का मतलब जबरदस्ती योग नहीं है, हठ योग का मतलब है ईड़ा पीड़ा नाड़ी का संतुलन अर्थात बाई नासिका दाई नासिका का संतुलन
0: जी,
1: तो यह हठ योग है। तो इसलिए जैसे जैसे इसका साधना करते गए साधक तो उन्होंने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसको योग नाम दिया। वास्तव में योग तो योग ही है, जिस प्रकार से भगवान एक ही है तो अलग अलग रूपों में पूजते हैं लेकिन भगवान तो भगवान ही है, उसी तरह योग तो योग ही है लेकिन योग साधकों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको वही अलग अलग नाम दिए।
0: डॉक्टर भूमेश कुमार जी, योग किस प्रकार स्वस्थ और सक्रिय जीवन का आधार बन सकता है, बढ़ती उम्र में योग के क्या लाभ हैं और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर हम बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं?
1: योग आज एक बहुत बड़ा भाग बन गया है स्वस्थ जीवन जीने का
0: जी।
1: जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंच गया है
0: जी।
1: उसके कारण से आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति योग के प्रति जागरूक है
0: जी।
1: तो इसलिए योग अब आधुनिक जो विज्ञान है वो शोधों पर है, अर्थात जब शोध का परिणाम आता है उसके आधार पर ही उसको लागू करता है, चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं
0: जी।
1: तो जितने भी आज तक जो शोध हुए हैं, और एक सबसे बड़ी बात कहना मैं चाहता हूं, शोध जो भारत के बाहर हुए हैं, भारत में तो अब हो रहे हैं लेकिन योग विषय पर आज से नहीं पूर्व में योग पर बहुत सारे शोध हुए, जिससे विभिन्न प्रकार के शारीरिक जो व्याधियां हैं, मानसिक व्याधियां, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है
0: जी।
1: तो उसी के आधार पर अलग अलग जो डिसऑर्डर है, बीमारी है, व्याधि है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से अर्थात एक कब किस बीमारी के लिए क्या क्या अभ्यास करना है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग एक तरह से जिसको हम मॉड्यूल बोल सकते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से क्या क्या करना चाहिए
0: जी।
1: ऐसा आज एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो गया है
0: जी। भूमेश जी, आज जब लोग कम उम्र में ही तनाव, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में योग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: योग जो कम उम्र में तनाव आ जाता है
0: जी,
1: यानी कम उम्र में कारण क्या है कि हठ योग कहता है तनाव का भूत, जब हमारी श्वास अनियंत्रित हो जाती है
0: जी,
1: हठ योग में कहता है चले बात हम चलम चित्तम, अर्थात वायु जब अनियंत्रित हो जाती है तो चित्त भी अनियंत्रित हो जाता है
0: जी।
1: तो हठ योग कहता है पहले आप अपनी श्वासों पर नियंत्रित करिए
0: जी।
1: अर्थात इसमें उदाहरण देना चाहूंगा, मान लो अभी हम बैठे हैं, अभी हमको तुरंत कहीं से फोन आता है कि आपका ऐसा परिवार का ये व्यक्ति कुछ अस्वस्थ हो गया या अच्छी समाचार आता है तो एकदम हमारी सांस ऊपर नीचे हो जाती है
0: जी।
1: तो उसका प्रभाव कहां पड़ता है, उसका हमारा ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पर पड़ता है। तो उसी अनुसार फिर जब ये बार बार ये चीजें होती है तो उसी के कारण ही हाइपरटेंशन हो रही है, उसके कारण ही तनाव में व्यक्ति जा रहा है, उसी का चिंतन करता है, नेगेटिव चिंतन करेगा तो स्ट्रेस में चला जाता है
0: जी।
1: तो योग का मतलब पहले अपने आप को मानसिक रूप से स्थिर करना है। तो अभ्यास कहां से होता है, यानी प्राणायाम के अभ्यास से शुरू करो, यानी पहले अपने आप को श्वास को स्थिर करो, जिसको सामान्य भाषा में आज भी चलन में है, कहते भाई पहले पानी पी ले, लंबी लंबी सांसें ले, ये भारत के समाज में आज भी चलन है लेकिन इस चीज को भूल गए यहाँ सब। इसलिए एक व्यवस्थित तरीके से, यानी जो योग का कोई शिक्षक है, योग को जानने वाला है, उससे जब

0: सीखता है तो सब चीजें सामान्य हो रही है।
1: जी
0: यानी अभी जो एक शोध आई है 8 तारीख को दिल्ली एम्स में डॉक्टर रीमा दादा ने उस शोध को किया है,
1: जी
0: उसमें 160 जो पेशेंट थे उन पर रिसर्च की गई। 12 सप्ताह तक वो शोध हुआ, उसमें स्ट्रेस हो गया, गठिया हो गया और बांझपन, इन तीन तरह के जो पेशेंट है उसमें लिए गए और उसमें मेडिसिन भी ली गई। उसमें जो कंट्रोल ट्रायल जो रिसर्च का था, अर्थात जो 160 पेशेंट थे उनमें से आधों को योग कराया, आधों को केवल मेडिसिन दी और उसका जो परिणाम है जबरदस्त परिणाम है, उसमें जो परिणाम आया जिनको केवल मेडिसिन दी उनको 26% इंप्रूवमेंट हुई और जिनको मेडिसिन के साथ साथ योग चिकित्सा भी कराई, योग थेरेपी भी कराई, आसन कराए, प्राणायाम कराए, प्रॉपर उसका मॉड्यूल है यानी उसको क्या क्या करना चाहिए, उनको 67% उनका गठिया में, हाइपरटेंशन में, स्ट्रेस में इंप्रूव हुआ। तो इस तरह से जब शोध पर जब कोई चीज आती है और उसका परिणाम आता है तब उस पर एक बहुत बड़ा एक विश्वास,
1: बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम इस बारे में आए हैं योग के।
2: जी योगाचार्य भूमेश जी, अक्सर हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र में डिमेंशिया, पार्किंसंस, गठिया और हड्डियों का कमजोर होना, इस तरह की कई परेशानियां लोगों के सामने आती है, क्या योग से इन बीमारियों का निदान भी संभव है?
0: हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि इस वर्ष का जो थीम भी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यही है
1: जी
0: कि हेल्दी एजिंग के लिए योग जो है, यानी बढ़ती उम्र में जो स्वस्थ कैसा राज है उसके लिए योग कैसे उसमें सहायक हो सकता है। और एक उम्र के साथ साथ में सामान्य रूप से भूल जाना है, यानी जिसको डायमेंशिया बोलते हैं, तो ऐसी हड्डियां कमजोर होना हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, आंखों की झुलझुलापन कम दिखाई देना हो गया, कानों में कम सुनाई देना, ये एक आम समस्या है एज के साथ साथ में। लेकिन जो व्यक्ति योग अभ्यास करता है, प्रॉपर सीखना चाहिए, तब उसका लाभ प्रॉपर होता है, तो तब उसका परिणाम होता है। जैसे डायमेंशिया की बात कर रहे हैं तो स्मरण शक्ति इसमें लॉस हो जाती है, बार बार भूल जाता है व्यक्ति। आजकल तो कम उम्र में भी ऐसी समस्या शुरू हो रही है। कारण क्या? कारण है कि उसमें एकाग्रता नहीं रहती व्यक्ति में, न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं और उसके कारण से व्यक्ति भूल जाता है। तो जब हम विशेष रूप से एक दो प्राणायाम का इसमें वर्णन कर, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम है, यह डायमेंशिया के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है। यानी जो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। न्यूरॉन्स बढ़ते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी ठीक रहेगी, ब्रेन की एक्टिविटी ठीक रहेगी तो स्मरण शक्ति ठीक रहेगी। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एक साउंड वेव प्राणायाम है, यानी जिसको हम मौं का उच्चारण कहते हैं, मंकार कहते हैं, ओम के तीन भाग हैं, अ उ म, जिसमें म जिसमें बोलते हैं, और इसमें भी अगर जीभ को अगर फोल्ड करते हुए ऊपरी तरफ लगाते हैं और फिर मौं का उच्चारण करते हैं तो तब उसका और परिणाम होता है। उसमें क्या है कि इसमें एक हल्की लाइट वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से हमारे ब्रेन को जो है ना एक तरह से वो एक एक्टिवेट करता है। जितना एक्टिवेट होता है तो उसी तरह से वो मस्तिष्क के जो क्रियाशीलता है, कार्य करने जो उसकी अपनी एक सहज जो एक स्थिति है वो सक्रिय हो जाती है और डायमेंशिया से व्यक्ति को फिर स्मरण शक्ति उसकी बढ़ने लगती है। यानी योग के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, योगस्य अभ्यासेन ये कुर्वन्तु दिने दिने, यानी जो प्रतिदिन योग का अभ्यास करता है उसकी आयु बढ़ती है। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्ते शांच जायते, अर्थात आयु की वृद्धि होती है। आयु की वृद्धि कब होती है? जब ऑर्गन हमारे ठीक रहेंगे, कोई ना कोई समस्या आएगी तो नेचुरली है उसमें डाउनफॉल आएगा शरीर में। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि है, तो बुद्धि कब ठीक रहेगी? जब हमारा ब्रेन ठीक रहेगा। तो ऐसे ही बल शारीरिक रूप से बल आएंगे, मजबूती आती है, स्टेमिना बढ़ता है और तेज तेज शांच, अर्थात जिसको बोलते हैं आपके चेहरे में क्या तेज है या क्या खाते आप, जैसे अभ्यास करता है तो एक मेटाबॉलिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है। उसके कारण से जो समस्या है, जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये बढ़ रही है। तो इसलिए जब पर्टिकुलर जब हम योग का अभ्यास करते हैं नियमित तौर पर तभी उसका असर हो, कभी कभी जो करेंगे तब तो उसका एक तरह से उतना परिणाम नहीं आएगा, लेकिन नियमित रूप से ही जब अभ्यास करते तभी उसका परिणाम होता है। तो इसलिए विशेष तौर पे जब अभ्यास जब व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ता है तो उपयोगी रहता है इस तरह।
1: जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में। डॉक्टर भूमेश कुमार जी, आधुनिक चिकित्सा और योग एक दूसरे के पूरक कैसे बन सकते हैं?
0: आधुनिक चिकित्सा का एक आज जो भाग है केवल एलोपैथी विशेष रूप से प्रचारित होता है, वो एक भाग है उसका। जब योग को चिकित्सा के रूप में लेते हैं, आज जब ये रिसर्च का एक शोध का मैंने आपको एक उदाहरण बताया तो वो भी आधुनिक चिकित्सा ही है।
1: जी
0: आधुनिक मतलब एलोपैथी नहीं है, एलोपैथी आधुनिक है, लेकिन आज उसके परिणाम के आधार पर जब परिणाम आता है तो परिणाम के कारण वो आधुनिक हो गया।
1: जी
0: तो उसका वर्ल्ड वाइड मान्यता कब मिलती है? जब वो शोधों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचती है।
1: जी
0: तो आधुनिक चिकित्सा का मतलब एक आप जो कहना मुझे लग रहा चाह रहा है कि एलोपैथी के साथ, आज एलोपैथी के साथ, यानी मैं एक उदाहरण

0: बता रहा था, यानी जब से भी एलोपैथी प्रारंभ हुई है वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी 96 की स्टडी पड़ी में, गुलिवेरी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें न्यूरॉन्स जो नर्व से लॉस होने शुरू होते हैं,
1: जी
0: तो वहां पर एलोपैथी के लोगों ने गुलिवेरी सिंड्रोम पर योग के साथ रिसर्च किया कि योग जो करता है उससे इंप्रूव होता है, गुलिवेरी सिंड्रोम ठीक होने लगता है,
1: जी
0: यानी वो रिकवर होता है तो अपना काम खुद करना शुरू कर देता है।
1: जी
0: ये जो एक नरेटिव बना है वो भारत में ही है, लेकिन आज जिस तरह से योग का एक परिप्रेक्ष्य में एक मान्यता मिली है तो ये काफी चीजें ठीक हुई है। अब
1: जी
0: मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा
1: जी
0: कि आज आधुनिक चिकित्सा, सभी आधुनिक चिकित्सा है जो आज शोध के परिणामों के आधार पर उसकी जो एक एथिक्स होता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो परिणाम के आधार पर लागू होता है तो आधुनिक चिकित्सा है।
1: जी डॉक्टर भूमेश, आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर अपने रोजगार या अन्य किसी कारणों के लिए देश विदेश में चले जाते हैं, और ऐसे में बुजुर्ग लोग घरों में अकेले ही रह जाते हैं। तो क्या बुजुर्गों में अकेलेपन और अवसाद की बढ़ती समस्या को भी योग कम कर सकता है?
0: बिल्कुल कर सकता है। योग वास्तव में अपने आप को जानना है,
1: जी
0: यानी मैं कौन हूं,
1: जी
0: यानी मैं केवल शरीर हूं क्या, मैं ये रहा नाम है तो यही है क्या, मन है क्या,
1: जी
0: जिसको सार्वभौमिक रूप से कहते हैं, हॉलिस्टिक रूप से कहते हैं, शरीर मन बुद्धि
1: जी
0: आत्मा, इन सबको जानना ही वास्तव में योग है। योग की यात्रा ही यही है कि मैं कौन हूं, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है,
1: जी
0: अर्थात परमात्मा कौन है जो सुपर पावर है, तो आत्मा क्या उसी का ही भाग है। जब इसी को जानता है व्यक्ति, अवसाद का कारण क्या है जो आपने बताया कि ओल्ड एज में अवसाद का कारण, कि अवसाद का नहीं रहता, तनाव में रहता है कि अच्छा मेरा बेटा वहां है,
1: वहां
0: मेरे को मुझे
1: है,
0: होगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा,
1: मैं अकेले
0: अकेला
1: हूं, मुझे
0: हूं,
1: कुछ हो
0: यहां कुछ हो
1: जाएगा
0: जाए
1: तो।
0: तो क्या होगा।
1: जी
0: तो जब व्यक्ति ये जानता है कि वास्तविक सत्य उसको पता ही है,
1: जी
0: इसलिए अपने आप को जानता है, मैं भी उसी परमात्मा के ईश्वर का अंश है, अपनी परमात्मा कौन, ईश्वर पुरुष विशेष और ईश्वर एकता है, वह
1: जी
0: जो सुपर पावर है उसी के भाग हम, जो पांच तत्व है उसी के भाग हम है। इसलिए
1: जी
0: शास्त्रों में कहा है, वेदों में कहा है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे यथ पिंडे पिंडे,
1: जी
0: अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, अर्थात पंच तत्वों का शरीर है,
1: जी
0: और जो इस पिंड में है वो उसी ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो सभी शरीरों में है,
1: जी
0: ये सत्य है। इस बात को ध्यान में रखते हैं, अगर व्यक्ति अपने आप को अपनी सांसों से अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करता है, केवल योग मतलब केवल आधे घंटे का अभ्यास करना नहीं है,
1: जी
0: योग मतलब सुबह जागने से लेकर रात्रि सोने तक एक जिसको बोलते हैं दिनचर्या ऋतुचर्या, उसको व्यवस्थित करना है।
1: जी
0: जब एक रूटीन में बनाता है व्यक्ति तो फिर वो फिर इधर उधर के विचार नहीं आते हैं, स्ट्रेस का कारण ही इधर उधर का अननेसेसरी थॉट होता है।
1: जी
0: तो जब अभ्यास करता है, अभ्यास करने का मतलब अपनी साधना को जोड़ता है कि मैंने इतने बजे उठना है, फिर योग अभ्यास करना है, भोजन करना है, यानी जिसको कहा गया है जीवन जीने की कला योग है वास्तव में, व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है
1: जी
0: योग से तो निश्चित रूप से वो जो तनाव है अकेलापन है उससे
1: जी
0: दूर कर सकता है।
1: एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या तकनीक और मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता ने हमें योग से दूर कर दिया है?
0: तकनीक में तो जो विकास है वो होता रहेगा, अब AI आ गया, हो सकता है इसके आगे कुछ और भी आ जाए, मुझे लगता है तकनीक उसका कारण नहीं है, तकनीक का उपयोग कैसे करना है
1: जी
0: ये उसका कारण है, यानी हम उपयोग को व्यवस्थित करें कि कितने समय मुझे मोबाइल का उपयोग करना है, यानी जिसको हम दिनचर्या है, अगर
1: जी
0: योगिक दिनचर्या जिसको कहा जाता है,
1: जी
0: यानी सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक, यानी अपना व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और कार्य क्षेत्र में भी अगर हम हर विषय को जो प्राथमिकता के आधार पर करते हैं तो अपने आप ही तकनीक कब उपयोग करनी है, कब उसका उपयोग है
1: जी
0: तो उसके आधार पर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल डिजीज का कारण ही है, जितना व्यक्ति मतलब मोबाइल का प्रयोग करेगा तो उसमें दोनों तरह के विचार आएंगे, पॉजिटिव भी आप अच्छा भी देखेंगे, बुरा भी देखेंगे, लेकिन बुरा जल्दी देखता व्यक्ति, अच्छा
1: जी
0: भूल जाता है,
1: जी
0: तो वही थॉट चलते रहते हैं।
1: जी
0: इसलिए अपने आप को कैसे प्रयोग करना, यानी उदाहरण के लिए कम से कम क्या सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार 5 5 मिनट का ऐसा सेट बनाओ कि 5 मिनट मुझे लंबा सांस लेना है, तो एकदम इतना से भी शुरू कर देता है व्यक्ति, वो मोबाइल से अपने आप दूर हो सकता है।
1: डॉक्टर भूमेश जी, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और लोगों को योग से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: वास्तव में योग के प्रति भारत में ऐसी धारणा बनाई गई थी कि योग
1: जी
0: में गिरी कंदराओं में रहने वाले लोगों के लिए है, तो ऐसा तो नहीं था, योग तो
1: सबके लिए
0: सबके
1: है।
0: लिए है। तो जब से विश्व पटल पर जो योग की एक मान्यता देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्थापित की है, जो 27 सितंबर को एक प्रस्ताव रखा था और उसमें 177 देशों ने
1: जी
0: जो उस प्रस्ताव के सह प्रायोजक बने थे, और उसी में जो प्रस्ताव को

0: 193 देशों ने उस प्रस्ताव को पास किया था
1: जी।
0: उसके कारण से एक पूरी दुनिया में योग की जो मान्यता स्थापित हुई, आज योग से कैसे बीमारियों के लिए उपयोगी हो सकता है और प्रिवेंशन के लिए सबसे ज्यादा है, रोकथाम के लिए पहले ही बीमारी के लगने से पहले ही अपने आप को शरीर ऐसा संकेत दे देता है
1: जी।
0: अगर शरीर के संकेत आपने समझ लिए वास्तव में वो योग यात्रा है
1: जी।
0: आज इस वर्ष जो अभी अहमदाबाद में भी योग की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई
1: जी,
0: जिसमें अभी भारत ने सबसे ज्यादा मेडल उसमें जीते हैं और दुनिया भर के जो 77 देश उसमें भाग लिए थे और 500 से ज्यादा उसमें एथलीट्स आए थे
1: जी।
0: और भारत सरकार में खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने उसमें घोषणा भी की कि भारत का नहीं, भारत सरकार जी जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसको वहां पर रखा है कि जो 2030 में जो भारत कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करेगा उसमें योगासन को जोड़ना है
1: जी।
0: और 2036 में जब ओलंपिक्स होगा तो उसमें योगासन जोड़ना है
1: जी।
0: अर्थात युवाओं के लिए भी आसन में योग का जो आसन भाग है, जो विशेष एक उपयोगी भाग होता है, उसको कैसे खेल के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं, चिकित्सा के रूप में तो आज स्थापित हो सकता है, इसको कोई डिनाय नहीं कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा योगदान एक कार्य देश के प्रधानमंत्री ने योग को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए किया है
1: जी। बिल्कुल, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप प्रदेशवासियों खासकर बुजुर्गों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा यही संदेश है कि योग को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं
1: जी।
0: कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा किसी शिक्षित योग शिक्षक से सीख करके योग का अभ्यास करना चाहिए
1: जी।
0: जब अपनी जीवन का हिस्सा बनाते हैं
1: जी,
0: तो उससे जो विशेष रूप से छोटी छोटी बीमारियां आती है उसको प्रिवेंशन के रूप में योग एक बहुत भूमिका अपनी बनाता है
1: जी।
0: इसलिए अब जब योग अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो सभी स्वस्थ हिमाचल, स्वस्थ देश
1: जी,
0: जो इस देश की योग की जो भावना है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय की, सभी सुखी रहने चाहिए, सभी निरोगी रहने चाहिए, वो जो भावना है वो तभी ही साकार होगी जब हम अपने आप के लिए जागरूक होंगे
1: जी।
0: इसलिए मेरा इतना ही संदेश है कि सभी अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए
1: जी। श्रोताओं, स्वस्थ आयु के लिए योग विषय पर इस भेंटवार्ता में हमने जाना कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सुखद जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। आइए हम सभी संकल्प लें कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ योग है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सुख और समृद्धि है। योगाचार्य डॉक्टर भूमेश कुमार जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ योग के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही सरल शब्दों में अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं आशा करती हूँ कि श्रोता इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश प्रमुख श्री रितेश कपूर जी ने। अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, जिसका विषय था स्वस्थ आयु के लिए योग। इस भेंट वार्ता में भाग ले रहे थे डॉक्टर भूमेश कुमार, योगाचार्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर, और इनसे चर्चा कर रही थी समाचार वाचक प्रभा शर्मा।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। सोमदत्त बट्टू और साथियों की आवाजों में लीजिए पेश है ये लोकगीत।

0: लोक संगीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों ने योग दिवस में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि योग भारत की ओर से संपूर्ण मानवता को दिया गया एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को दुनिया के 189 देशों में अपनाया है।
3: पूरा भारतवर्ष की जो परंपरा है उसको पूरा विश्व अपना रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 189 कंट्रीज में 2014 से ये प्रयास शुरू हुआ। स्वस्थ जो शरीर रहता है, स्वस्थ मन का परिचायक रहता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार से लेके समाज से लेके हर घर में योगा का प्राथमिकता दें और हमारी जो परंपरा है वो भी जीवित रहे।
2: प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने योगाभ्यास सत्र का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस पुस्तिका में योगासनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आयुष व खेल मंत्री यादविंदर गोमा सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। उधर घुमारवीं के बलोह व त्यून खास में आयोजित योग शिविरों में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने योग को दैनिक जीवन शैली में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही प्रदेश व देश के विकास में प्रभावी योगदान दे सकता है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों ने नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर के नादौन में करीब 100

25 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को इसी वर्ष प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। हमीरपुर के अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवा खिलाड़ियों व अन्य बच्चों के साथ आज एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस इंडोर स्टेडियम में 14 तरह की खेल गतिविधियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया है। देश विदेश के विभिन्न शहरों में आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और उम्मीदवारों से बिना किसी भय के परीक्षा देने का आह्वान किया है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और उम्मीदवारों से बिना किसी भय के परीक्षा देने का आह्वान किया है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने स्पीति के सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन की जानकारी ली। इस दौरान युवाओं ने आईटीबीपी के साथ योग सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने स्पीति के सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन को करीब से जाना। इस दौरान युवाओं ने आईटीबीपी के साथ योग सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां उन्हें अनुशासन और बुनियादी सुरक्षा तकनीकों की जानकारी दी गई। युवाओं ने राजकीय उच्च पाठशाला लालुंग में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के प्रति सेवा और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति समय सुरेंद्र कुमार।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के 151 स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया है। इनमें शिमला जिले के 24 स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार CBSE संबद्ध स्कूलों में खेल, कला, संस्कृति, संचार कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी और जीवन कौशल पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस पहल से सरकारी विद्यालयों में ही आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल।
0: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत 2015 में हुई, तब से अब तक ये संयुक्त राष्ट्र प्राधिकृत सालाना आयोजन से बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े सहभागी आरोग्य आंदोलनों में से एक बन गया है। ये साझा योगाभ्यास के जरिए विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समुदायों के लाखों लोगों को एकजुट करता है। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। ये संस्करण राष्ट्रव्यापी भागीदारी, नवोन्मेषी शुरुआतों और समूचे साल चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवा और सक्रिय जीवन को बढ़ावा देकर योग दिवस की यात्रा को आगे ले जाता है। भारत और योग का नाता सहस्त्राब्दियों पुराना है। भारत की प्राचीन परंपराओं पर आधारित योग एक आध्यात्मिक और दार्शनिक परिपाटी से आगे बढ़ते हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के वैश्विक आंदोलन में तब्दील हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसके सार्वभौमिक आकर्षण और लोगों को मान्यता देते हुए 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। इस संबंध में प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से 69वें अधिवेशन में पेश किया। इस प्रस्ताव का 175 सदस्य देशों ने समर्थन किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। यूनेस्को ने 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की अपनी प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। एक युगांतकारी मान्यता वैश्विक आरोग्य में भारत के योगदान को रेखांकित करती है। ये योग की यात्रा को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाकर इसे सभी महाद्वीपों पर फैले वैश्विक समारोह में तब्दील करती है। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन ने राष्ट्रों के बीच स्वास्थ्य, सौहार्द और संवहनीय जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले सेतु के रूप में योग की भूमिका को मजबूत किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देश भर में हजारों आयोजनों के जरिए मनाया जाता है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन हर साल एक अलग शहर में किया जाता है। मुख्य आयोजन की शुरुआत 2015 में नई दिल्ली के राजपथ से हुई थी। इसके बाद इसे चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, रांची, मैसूर, जबलपुर, श्रीनगर और विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा चुका है। इस बार मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है, जो विश्व भर में जीवन भर स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने पर ध्यान देने पर जोर देती है। जैसे जैसे दुनिया भर में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और गैर संचारी रोग व जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं,

0: ध्यान केवल जीवन के साथ बढ़ाने से हटकर स्वस्थ रहने की अवधि, जीवन की गुणवत्ता और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने पर केंद्रित हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं कि योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां देशव्यापी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से काफी समय पहले ही शुरू हो गई थी। इस वर्ष के आयोजनों की औपचारिक शुरुआत करते हुए 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से 100 दिवसीय काउंटडाउन का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के दौरान एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल की गई। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: सामयिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे। विषय था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। वाचक स्वर थे राजकुमारी चंदेल। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। कुल्लू और
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। FM

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 3:10 हुए हैं। FM शिमला पर वक्त है ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम का। आज 21 जून को फादर्स डे, योग दिवस और विश्व संगीत दिवस है। आप सभी को फादर्स डे, योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करें संगीत की, तो संगीत वो भाषा है जिसे समझने के लिए किसी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होती। ये सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बैजू बावरा फिल्म का गीत, गीत के बोल शकील बदायूनी के संगीत नौशाद का।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं का साथी, हमारी संस्कृति का दर्पण और जीवन की मधुर अभिव्यक्ति है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सूरज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का। संगीत हमें जोड़ता है, भाषा क्षेत्र और संस्कृति की सीमाओं से आगे बढ़कर ये प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में नागिन फिल्म का गीत, गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म संगीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 3:30 होने को हैं। लीजिए पेश है युववाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आकृति शर्मा, आपकी दोस्त और आज की होस्ट। आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में पूरी तरह कभी बयान नहीं कर पाते। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में तो बहुत गहरे होते हैं, लेकिन जुबान तक आते आते कहीं रुक जाते हैं। और ऐसा ही एक रिश्ता है पापा का। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शोर कम होता है लेकिन मोहब्बत बे इंतहा होती है। एक ऐसा रिश्ता जो अक्सर खामोश रहता है पर पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दुआ करता है। आज फादर्स डे के इस खास अवसर पर हम बात करेंगे पापा की, उनकी मोहब्बत की, उनके त्याग की और उन जज्बातों की जो शायद हम रोज़ महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। कभी सोचा है आपने, बचपन में हमें क्यों लगता था कि पापा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं? क्यों लगता था कि अगर पापा साथ हैं तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं? शायद इसलिए क्योंकि हमने उन्हें कभी हारते हुए नहीं देखा, हमने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, हमने उन्हें कभी टूटते हुए नहीं देखा। हमने बस उन्हें देखा सुबह जल्दी उठते हुए, काम पर जाते हुए और शाम को थक कर लौटने के बाद भी हमारे साथ मुस्कुराते हुए। बचपन कितना खूबसूरत होता है ना। जब हम गिर जाते थे तो सबसे पहले एक ही नाम जुबान पर आता था, पापा। और पता नहीं कहाँ से वो तुरंत हमारे पास आ जाते थे, कभी कंधे पर उठा लेते थे, कभी आंसू पोंछ देते और कभी बस इतना कहते, कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा बहादुर है। और सच बताऊं, उस एक लाइन में इतनी हिम्मत होती थी कि सारा दर्द खत्म हो जाता था। मुझे लगता है हर पापा के पास कोई जादुई ताकत होती है

क्योंकि जब हम उदास होते हैं वो हमें हंसा देते हैं, जब हम डर जाते हैं वो हमें हिम्मत दे देते हैं, और जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ लगती है तब वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ प्यार के साथ। पापा का प्यार अजीब होता है, वो कभी आई लव यू नहीं बोलते, वो कभी गले लगाकर हर अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो पीछे से एक आवाज़ ज़रूर आती है, ध्यान से जाना। और उस एक लाइन में कितनी फिक्र, कितनी दुआ और कितनी मोहब्बत होती है, ये सिर्फ दिल समझ सकता है। कभी नोटिस किया है, पापा खुद के लिए शॉपिंग करते हुए हिचकिचाते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ भी खरीदने से पहले कभी दो बार नहीं सोचते। हमारी फीस, हमारी बुक्स, हमारी कोचिंग, हमारे सपने, सब कुछ खुशी खुशी। और बदले में क्या चाहिए होता है? बस इतना कि उनका बच्चा खुश रहे। दोस्तों, कभी कभी कुछ जज्बात सिर्फ गीत ही बयां कर पाते हैं। एक बाप की मोहब्बत को, उसकी खामोशी को और उसके दिल में छिपे प्यार को महसूस करिए इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, क्या खूबसूरत गीत है ना। सच में पापा हमारी जान ही तो होते हैं। उनकी उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं, उनके कंधों पर बैठकर दुनिया देखते हैं और उनकी दुआओं के सहारे जिंदगी सीखते हैं। एक बार सोचिए, जब हम छोटे थे तो पापा हमारे लिए सब कुछ थे। फिर धीरे धीरे हम बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, दोस्त, करियर, जिम्मेदारियाँ, और इस सफ़र में हम थोड़े बिजी हो गए। लेकिन एक इंसान आज भी उतना ही फ्री है हमारे लिए। आज भी हमारे एक फ़ोन का इंतज़ार करता है, आज भी हमारे देर से घर आने पर परेशान होता है, और आज भी हमारे लिए वैसे ही दुआ करता है जैसे बचपन में करता था। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि हम पापा को बहुत कुछ देंगे, उनके लिए बड़ा घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, दुनिया की हर खुशी देंगे। पर सच कहूँ, पापा को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम उनके पास बैठकर सिर्फ इतना कहते हैं, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू। और यकीन मानिए, ये दो शब्द उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होंगे। दोस्तों, एक बाप का सपना क्या होता है? खुद का बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बहुत सारा पैसा? शायद नहीं। एक बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि जब कोई उसके बच्चे का नाम ले तो वो गर्व से मुस्कुरा सके, उसकी आंखों में एक चमक हो और वो दिल से कह सके, ये मेरी बेटी है या ये मेरा बेटा है। दुनिया की सारी कमाई एक तरफ और बच्चों पर गर्व करने का एहसास एक तरफ, पापा की असली दौलत हम होते हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक वक्त आता है जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि पापा हमें समझाते नहीं, पर बात हर बात पर टोकते हैं, हर फैसले में सलाह देते हैं, और कभी कभी हम उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या हम सच में उनसे दूर हो जाते हैं, या फिर हम सिर्फ ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान ने हमें चलना सिखाया वो हमें गिरते हुए कैसे देख सकता है? शायद पापा रोकना नहीं चाहते, वो बचाना चाहते हैं, शायद वो हमें समझाना चाहते हैं कि जिंदगी की राहें उतनी आसान नहीं जितनी दूर से नज़र आती हैं। आज इसी एहसास को महसूस करते हैं एक ऐसे गीत जो घर, अपनापन और उन रिश्तों की बात करता है जो हमें हर बार अपनी जड़ों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, सुनिए दिल को सुकून देने वाला ये खूबसूरत गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आकृति शर्मा। अभी आपने सुना आशाएं, और कितनी खूबसूरत बात है ना कि हम पूरी जिंदगी एक घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है उस एहसास से जहां कोई आपकी हर छोटी बात याद रखता है, जहां कोई आपके लिए बिना कहे दुआ करता है, और जहां आपकी हर जीत पर सबसे ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, और अक्सर उस एहसास का नाम होता है पापा। दोस्तों, बचपन में हमें लगता था कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हर बात पर मना करना, वक्त पर घर आने को कहना, पढ़ाई के लिए डांटना, उस वक्त ये सब रोक टोक लगती थी। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो समझ आता है कि वो रोक नहीं रहे थे, वो हमें संभाल रहे थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं, कहीं हम किसी तकलीफ में ना पड़ जाएं, कहीं जिंदगी की भीड़ में हम खुद को कहीं खो ना दें। दोस्तों, एक बात तो हम सब मानेंगे कि जिंदगी बहुत तेज़ी से बदल जाती है। कल तक जो पापा हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, आज हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगे हैं। कल तक जो हमें चलना सिखाते थे, आज उनके कदम थोड़े धीमे हो गए हैं। और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे इमोशनल सच है। वक्त नहीं बदलता है, लेकिन पापा का प्यार कभी नहीं बदलता। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके फ़ोन को बाद में कॉल करने के लिए छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कल बात कर लेंगे, अगले हफ्ते मिल लेंगे, थोड़ा फ्री होकर उनके साथ वक्त बिता लेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते इंतज़ार नहीं मांगते, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगते हैं, और पापा उन्हीं रिश्तों में से एक हैं। आज अगर आपके पापा आपके साथ हैं तो उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए। शायद वो ज़्यादा ना बोलें, लेकिन उनकी आंखों में आपके लिए जो प्यार है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल

सकता। और इसी एहसास के साथ सुनिए एक ऐसा गीत जो यादों, बिछड़ने के डर और अपनों के प्यार को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।

अभी आपने सुना लुका छुपी, और सच कहूँ कुछ गाने दिल के उस कोने को छू जाते हैं जहाँ हम अपनी सबसे प्यारी यादें संभाल कर रखते हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि पापा स्ट्रांग होते हैं। हाँ, वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। वो भी उदास होते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी कभी कभी अकेला महसूस करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो अपने आंसुओं को हमसे छुपा लेते हैं ताकि हमारी मुस्कान कभी कम ना हो। एक बाप की ज़िंदगी सबसे बड़ी कमाई उसका बैंक बैलेंस नहीं होता, उसकी असली कमाई होती है उसके बच्चे। जब कोई उनसे कहता है आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है या आपका बेटा आपका नाम रोशन कर रहा है, तो उस पल उनकी आंखों में जो चमक आती है उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। शायद इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ना पड़े, इतना वक्त ज़रूर निकालना चाहिए कि हम अपने पापा के पास बैठ सकें और उनसे कह सकें, पापा जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। दोस्तों, आज का ये सफ़र अब अपनी आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, और आगे हम बात करेंगे उस एहसास की जो शायद हम सबके दिल में है लेकिन हर बार अल्फाजों में नहीं आ पाता। शुक्रिया पापा। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफ़र में हमने पापा के प्यार को महसूस किया, उनके त्याग को याद किया और उन जज्बातों को अल्फाज देने की कोशिश की जो अक्सर हम दिल में ही छुपा कर रख देते हैं। शायद हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें एहसास होता है कि पापा सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि वो हिम्मत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है, वो दुआ है जो हमारे साथ हर मोड़ पर चलती है, वो साया है जो खुद धूप में रहकर हमें छांव देता है। अगर आज आपके पापा आपके साथ हैं तो घर जाकर उन्हें एक बार जोर से गले लगाइए और कहिए, पापा आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए शुक्रिया। और अगर किसी वजह से वो आज आपके साथ नहीं हैं तो उनकी यादों को दिल से लगाइए, क्योंकि एक बाप कभी दूर नहीं जाता, वो अपनी सीख में रहता है, अपनी दुआओं में रहता है और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की मुस्कान में रहता है। और दोस्तों, इसी प्यार और एहसास के साथ सुनिए आज का आखिरी गीत। ये गीत हर उस बेटी और हर उस बच्चे की दिल की आवाज़ है जो अपने पापा से बेहद प्यार करता है।

कितना खूबसूरत गीत था ना दोस्तों, और शायद इसी एक गीत में पूरी ज़िंदगी समाई हुई है। रिश्तों की मिठास, जुदाई का डर और प्यार की वो गहराई जो कभी कम नहीं होती। इसी के साथ आज का ये खास फादर्स डे स्पेशल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का ये सफ़र आपको अपने पापा के और करीब ले गया होगा और आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है उसे थोड़ा और गहरा कर गया होगा। मैं हूँ आकृति शर्मा, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे फिर युवानी के एक नए एपिसोड में, एक नए विचार और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपने पापा को वक्त दीजिए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें ये महसूस कर ज़रूर दिलवाइए कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई आप हैं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल दी अमेजिंग फादर्स। नमस्कार।

युववाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। हमारी स्टूडियोज की घड़ी में 4 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ों में संजोग फिल्म का गीत, गीत के बोल अनजान के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कालियो रोहांडो बेगे बढ़िया छणक दे नाटे भी हमें सुने। गुलबात योग एक शब्द अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज असो बो योग एक शब्द बो पल की बात करूँ मैं श्रीमद भगवद गीते दे ठारो अध्याय और हर अध्याय दा सुन के योग लिखा जिंदगी एक योग यसो। मारा जो शरीर हो ना एक यंत्र जर मशीन कह रही हो ऐं बिटके आत्मा हमें बस दो यंत्र हम एरा मिला जहाँ मैं ये पा किए भी कर सकूँ। मानव देह देह बोली शरीर दुर्लभ हो बड़ा मुश्किल हो। देवते यक्ष गंधर्व किन्नर जितने भी बुद्ध तरसो देह मिल दे कहीं इथो माच सीधा मुक्त हो सको। मुक्ति मतलब का मुक्ति मतलब है जे जन जोड़ना मरना मतलब न को दे जैसे पैदा होने न को दे से मरना एरा माच से मुक्ति होना। मुक्त आत्मा मतलब है जे तसर इच्छा से भगवान वाला रूप हो इसे लुको का होने नहीं आने इतना जुर्म लोना नहीं लोना किर कब होने से मुक्त हो तस्के के मुश्किल नहीं हमेशा हमेशा और से हमेशा खुशी रहो भगवान रूप से बनो। और ये बड़ा मुश्किल हो मनुष्य दे और एक शब्द आसन बोला गया एक शुद्ध बढ़िया धंधा भी योग। बिल्कुल छोटे दिया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन उपदेश दिया अर्जुन को अर्जुन तो ना से एक नाव से दिया पूरी दुनिया का हमें बते रही अर्जुन से। बिल्कुल तिंदु बोलो जे योगी सर्वश्रेष्ठ असो कहीं हो हमें जो योग करूँ से पता लग सको मन बुद्धि शरीर गे जो माच नियंत्रण कर सको से योगी हो सको। योग देखो आज ही जो का हमें बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट से उपग्रह रख लो है बड़े बड़े उपकार आविष्कार कर लो है उपग्रह रख लो है उन्होंने खोज कर लो है उन्होंने ग्रह ठा लो है पर ये तो पिंडी थती बोली तत्पर भांडे मतलब जो हम बिट को होना सही पेंट को मनुष्य जो शरीर हो इन बिट के

लोको पूरे ब्रह्मांड हुंदा सातु पूरा ब्रह्मांड दिया दो हमें जिंदा रहू ना पूरा ब्रह्मांड इतना बिट कर दिया दो बिल्कुल है बड़े सूक्ष्म चीज और अहीं को देख सको योगी माज सिद्ध पुरुष माज देख सको और सिर्फ कामश किलो मन रा नियंत्रण मन बड़ा चंचलो एंगेज है कसल कबू पागुआ तो तिसके के भी मुश्किल नहीं थे। आज ही जो मैं बोलूँ जे हमें एक ग्रह ठोल पिया दूजा ग्रह ठोल पिया चीजा ठोल पिया पर ग्रह की कोई तुलना नहीं है अरबों खरबों ग्रह उपग्रह न स्वर्य होते पर सब तो बड़ी बात है जे मन रे चित्त रे शांति या चंचलता कहरे मिटो एक योग एक बड़ा बढ़िया धंधा सो ऐरे आठ ही रे बोली भी जे एक तिर तो ना भी हम आज ही जो करूँगा मैं सिर्फ पकड़ा है इरकेम कही है आसन जे की प्राणायाम जो की चलो एड़ो ही करूँ ना तो यहाँ शरीर फिट रहो कहीं जो शरीर ही ठीक नहीं धंधा तो माच कमाई अब क्या कर दो या जे तुम्हारा घर परिवार छोट भी ठीक नहीं है थी तो जीवना भी कहीं कहो गरीबी अमेरे बागो सोंगे अपने मुकदर सोंगे मेहनत ते भावें पर दूर करियो पर जो शरीर से तई करना पड़ी मेहनती एरने मिलने से तुम खाओ पीवो शुद्ध है और योग प्राणायाम शुद्ध बढ़िया आठ इन्हें के धंध्यो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सुन के अवस्था समाधि इन दो निर्विकल्प सविकल्प निर्विकल्प कह रहे हो जो ध्यान किया तो समाधि लागे जो टोरा तो नहीं उनके ना सविकल्प कह रहे हो उससे हमेशा रहो समाधि अवस्था का माच नहीं बोली सविकल्प और समाधि का मतलब क्या हो समाधि हो सत्य चित्त आनंद सच्चा आनंद चित चित्त बोली मन आत्मा शरीर जो इन माच खुश रहो जो माच इन पटुआ से हमेशा खुश रहना हमेशा ही खुश प्रसन्न नया आनंद मिलना हमें खाओ पीओ घूमे फिरे ऐश्वस्त के हकड़ा मजा हो जा एवं नहीं ये आनंद जो हकड़ा अब की हम नहीं बसे पर जो योग पा आनंद जो ना भगवान शिव शंकर योगीराज बोली भगवान विष्णु योगेश्वर बोली हमेशा कहीं रहो योग के आश्रय में शिव जी कहीं रहो हमेशा बिछाई रहो ध्यान में वो आनंद हो आनंद अवस्था होती है ऐरे अवस्था दो कि मुश्किल नहीं जो तेस प्राप्त ना हो भगवान मतलब जो इंदा माच पुजुआ तो इस दुनिया दो का इस ब्रह्मांड दो ऐरे की चीज़ नहीं जो तेस नहीं मिल सकते और जो चीज़ मिलेगा उसे तेस तो दूर चीज़ नहीं रह सकते हमें ही बोलूँ जो तुम किए ना करियो प्राणायाम करो बस प्राणायाम करो ये पा माँ शरीर रहो ठीक रहो जिस चीज़ उठियो कड़े भैंस से उठो घूमो फिरो बस ब्रह्म मुहूर्त ना उठियो या सूरज निकलो तो इन 10 मिनट पोली उठ जाओ घूमो फिरो घूमो फिरो कड़े जे प्राणायाम जो करो कड़े बस 20 मिनट आओ तू के आपको भैंस रहे सिर्फ 20 मिनट 10 मिनट घूमो फिरो 10 मिनट करो प्राणायाम करो हकड़े एक दो आसनों की रोज ये पा भी तुम्हारे आदि के यहाँ का हो तनाव दो तनाव हो मुड़ लगो बिदनी अवसाद हो बेचैनी हो कब्जो आदि तो ज्यादा दूर लिए बिल्कुल एड़ा जहा काम करना जो तो खैर फ्री भी करोगो कि तू तो चिमचि तो पल पलिए एड़ा काम करोगा ये रुट रुट खाना तो पलिए बेड़ी एड़ा काम करोगा प्राणायाम करोगो कि तकड़े ओकड़े तिण गए ओकड़े एक दो आसन करोगे अपना शरीर ठीक रखिया एड़ू करियो तो ये पा में माश स्वस्थ रह सको जो तो खैर कहता ध्यान करोगा ब्रह्म योग है नाद योग है राजयोग है और कहता ध्यान करोगा आधे घंटे ध्यान किया यही बेस पा तुम रोज आँखें बंद करो एड़ा ध्यान करो किए नहीं सोचनो शांत हो जाओ सोचनो ही किए नहीं ओम गुंजाय करो अपनी आँखें जो बिटकी तेरी बोली भ्रियूशी जगह देते जितने तुम टिक लाओ बिल्कुल जी पे माथे गेरा इता आँखें के ध्यान लाना इता आँखें बिकी बा बंद और बोलो तो निर्ज आँखें खोलियो ये तो देखो देखो बड़ी किरको ना जब एड़ो जब करियो आधे घंटे तुम्हें इतना ही शून्य ना शून्य तो आधे दस ज्यादा बेचैनी या बड़े मतलब परेशानी ऐसे चीज़ों जो हम जिंदगी परेशान हो जो हमारे जिंदगी दिक्कत कम नहीं आने एडा ही बिने मत हमारा जो आप टेंग दो टेंशन नहीं से कदे दिमाग दी आनी नहीं बिल्कुल और ये रड़े बढ़िया विचार दिमाग दी आने और मन शांत रहना जो कि बिटको से अव घुगी घुगड़ू लगो दो से खत्म होना आप ही खत्म होना ऐरे जादुरी चीज़ हो करियो देखो कि भाई हमें तुम ऐ बोल सको एक भी करियो देखो तो देखो तुम्हें चमत्कार से किरण नहीं होते योग एक बड़ी बढ़िया चीज़ हो ब्रह्मांड और नायक प्रकृति पुरुष जो सो एक ही रूप हो श्री कृष्ण हमें को दया हो जो भगवान शिव जी का आशीर्वाद हो जो हमें पूरी दुनिया के दिया बरत है हमें आप ना बोलो सही करो

तो देखो तुम्हें ये चमत्कार गलबात और रड़ में एड़ी क्योंकि ये भी अलग आ वक्त कलाकार विनोद कुमार ड्यून ड्यून तुम एक बड़ा बढ़िया जी लोकगीत तो ही।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अभी आप आनंद ले रहे थे महास्वी कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं किन्नौरी कार्यक्रम।

किनोरिंग बैसी नमस्कार जो आकाशवाणी शिमला केंद्र तू जो प्रोग्राम कल्पारंग कुल्लू रिले केंद्र ली रिले आचो बैसी के सुरेश नेगी तुरुक सु किनोरिंग प्रोग्राम रिशी हाजिर तो बैसी तो दम तो चग आशा लानो तो कि फाइलो प्रोग्राम रोची बैसी दम की दीती नहीं होगा कि ननु तुरुक सु प्रोग्राम रूपरेखा बारे जानकारी के तो कि भाई प्रोग्रामों को काशी तो बैसी ख्याच तक कि भाई प्रोग्रामों को गीथंग वार्ता रहें कि खबरसार काशी तो नहीं हो जैनोम से इत जो पतंग की ख्याच तक कि भाई तुरु निजाऊ ईद जून नियो जू दियार में ख्याल तक कि बे काशा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौका दिन काशा मोनियाज नहीं हो वैसे ख्याल तक कि भाई काशा नु माउते हैं समय तो त्वन ज्ञामी को हाल जरूरी नहीं हो ख्याल तक कि भाई योग ही योग काशा लड़ना तंगमा जू काशा नु ईद ख्याल तक योग निरोग रो जू काशा नु जैसी ईद वाल दम नहीं कि माऊ स्वास्थ्य होते हैं वाल दम बतंग नहीं हो जोर ख्याल तक कि कशा नियमित तौर दिन योग लड़ना तंगमा जो कशा नु ईद ख्याल तक कि भाई माऊ ड्याऊ तयें स्लोशिमा या माऊ सेहतु तयें स्लोशिमा या माऊ जो मनाऊ चू ईद मानसिक तनाव नीमा तंगमा दो तयस जू वाल फायदेमंद नियो वैसी ख्याल तक कि भाई समय ही कशा न मानीज नहीं हो लेकिन जू त्वन्ना तंगमा जूस ख्याल तक कि कशा नु इत मानसिक शांति रंग एक एक थतली चीज पर कशा लानी गया मा थतली काम पर कशा लानी गया मा तंग मा कि इत मनों को मो ई बिरंग कशा आवे लोशित की भई चिड़चिड़ा पन लोशी मा या कशा सेम से पंजिंग ली ताद नंग ली शेत नहीं हो से को चाहिए दोलांज नहीं हो लेकिन ख्याल तक कि कशा नियमित योग लानना तंग मा दोस्त इत ख्याल तक कि कशा नु इत कमो लानू तैसरी इत वाल दम नंग एक एक नियमित तौर दिन कशा वाल दम तरीका तो लंज नहीं हो आई बताऊँ कुमो कशा ख्याल तक कि भाई थली का वंग कशा वही हासिल दंग हासिल रूँ दो बलंस नहीं हो नियमित तौर दिन कशा दो लंस नहीं हो जूस ख्याल तक अच्छा पाचन लोशी मातंग माँ या मापंग इद माऊ ड्याऊँ कुमो इद इद ख्या कशानु भारी पन लोशी माँ या इद मापंग सांदा सुस्त लोशी मातंग माँ या थली दोनी मातंग माँ योग कशानु ऐसा दम नहीं कि माप इत दम मोनंग नहीं कि दम स्वस्थ ताज नहीं हो हुजू बतंग दें ची ख्याल तक कि भाई तोरो देशो प्रधानमंत्री जी से दो ख्याल तक कि भाई योग दिवस मौका दिन से ही ख्या छा कशान तालीमू दिन संबंधी नीमा जी की छा लोशी मत से कोई तरह आल नंचित कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐसा दम नहीं कि दम तरीका से मुड़े होते हैं समय नहीं कि जो लंचित नहीं हो जुपंग कशा ख्याल तक कि भाई भरपूर मात्रा दिन कशा ऐसा दम तरीका से दो लड़ना तंगमा जो कशा तय वाल फायदेमंद नहीं दोनों थतली चीज़ पर कशा लानी गया मत मैन समय नहीं गया भी नहीं हो जूस कशा नु फायदा था तो उसी तो नहीं हो लेकिन ख्याल तक कि भाई जो ईद कशा ख्याल तक कि भाई जूस माऊ ड्यांग बिल्कुल कशा ख्याल तक ड्यांग बिल्कुल फिट दाम गया माँ या ईद ख्याल तक कि भाई कशा थाजा तुम तुम कशा ऐसा सोम सर समय दिन सरशीस योग लड़ना तंगमा जो मापुंगता फायदेमंद ही नहीं हो लेकिन जिस ख्याल तक कि भाई माऊ इध दिनचर्यों को मो योगा लन्नी हुई से इध बदलाव ही अलग बस नहीं हो जो चीज़ पर कशा ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो तो काचता दो मग प्रोग्राम को शुरू लानी का उनसे ईद की थंग सुना चुनी हो रोन चीज़ भाई से ही मायूम नहीं युका दो जूगी थंग

शुभकामनारायण शीत नियो देंची आने संगशीत की वही इम्तिहान तय से चई आवश्यक सुविधा मुहैया लंशीत रो जो बताऊँ जानकारी किए शीत नियो आए आने उम्मीदवार को बिना बह चू माध्यम देंच जो इम्तिहान को रानू तय जानकारी किए शीत बैसी देंची ख्याचक की भाई प्रदेश कुमो राष्ट्रीय योग दिवस हु ख्याचक समारोह हामिरपुर मोनयाशी नहीं हो प्रदेश को मुख्यमंत्री जी से योग जुपंग जो स्तरु शुभकामना लंचित नहीं हो देंची जो मौका देन करीबन करीबन निश हजार मिगास जो अभ्यास कुमो शामिल आची शी नहीं हो आने ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौका देन संबंधित ईद पुस्तिकावली विमोचन लंचित नहीं हो जो योगासन देंच संबंधित से जानकारी है जोर तो जो बात हूँ जानकारी की शी नहीं हो वैसे तो कहते तो मग आई की थंग सुना चोरी रंचित वैसे चंद्र जमुना ने की जो उनका तो कुमो जुगी थंग

바이시 도케 키나스 기탕 더 론지 니오 바이시 키아테 키 바이 우시 기타 카샹 론지 마당 마 도풍 카샹 바르발리 카샹 데트라 볼탕 론지 마당 말리 리킨 카샹 도 카샹 위드 마노런젠 카샹 도 니즈 니오 호데스 키 키아테 키 바이 주치 스핑 카샹 에사 담 드리카스 돌란 나당 마 주 카샹 주 미닝 폰 카샹 순센 나당 마 조 가랍 사르 폰 카샹 순센 나당 마 조 가랍 도니오 리킨 호데스 키 키아테 키 바이 카샹 माउ मनोरंजन नंग एके के माउ कामंगली खास तरीका से काशा मनोरंजन नंग एके दोलन दोलन से नहीं हो खोदेस की ख्याल तक कि भाई तोरो देशों को मो प्रदेशों को मो सही जगह जगह को मो काशा जिला को मो पंचायतों माध्यम पंचायती स्तर दिल्ली काशा ख्याम तक मा गरब जगह को मो तालिम साइला जगह को मो सही पिंग योग दिवस पिंग वाल दम नंग एके आशुला से मने होनी हो जू थू लंग मा तक मा काशा योग इत जो ने निरोग रो दूषमो तैंस इत जो साधन रो जो काशा जो तैंस जो लानो नहीं हो होदेस की भाई से ख्याल तक कि भाई तालिम से आछान हो दा जो नियमित तौर दिन काशा जी सोची जो जो पंग आदत छिन्ना तक मा जो बच्चे आदि आरु को मो वाल दम नंग एके गुणकारी नहीं हो होदेस की भाई से ख्याल तक कि भाई योग इत काशा नियमित तौर दिन काशा लानना तक मा जो संयम नंग एके के माऊ मस्तिष्क नंग एके ड्याऊ तैंस रंग एके सही को तैंस वाल फायदे रंग एके गुणकारी नहीं हो होदेस की ख्याल तक कि भाई काशा जो नियमित तौर दिन लानना तक मा काशा थे चीज पर सुन ससो दो चीज पर काशा लानू तैंस हंशो नहीं हो दो रंग एके के आई बतंग कि भाई काशा ख्याल तक कि भाई काशा ई पुलटंग तालीमू तैंस लोशी मा तक मा या थली चीज में लानू लानी का ओम्स काशा ख्याल तक कि भाई ध्यान रो योग माध्यम कशा मेडिटेशन लानी महान सुनी हो जो चीज पर कशा ध्यान तामी बहुत जरूरी नहीं हो कशा ख्याल तक कि भाई मोनंग पंग शांत तामू रहे कि जो ख्याल तक कि मानसिक एकाग्रता रहो जो जो पंग दो लानू दें संयम दो लानू दें से ईद कशा ख्याल तक कि वाल दम नहीं कि जो सुन सन गया बहुत जरूरी नहीं हो होदेस की ख्याल तक कि भाई योग तक एक एक जामू तुंगली कशानु ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो ख्याल तक कि वे नियमित योग रंग एक एक कशा जामू तैंस अंकुरित चने लोशिमा तमा अंकुर से थली चीज जामा तक मा जो कशानु पौष्टिक तंग एक एक माऊ ड्याऊ तैंस वाल दम दम रंग एक एक जो ईद कशानु पौष्टिक आहार नहीं हो जो चीज पर कशान ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो वैसे ख्याल तक कि भाई तुरुक सुधारु कुमो कशा ख्याल तक कि भाई ईद तालीमु दृष्टि दें या कशा ईद सुनचन ई विरंग गोमिक ली दोपंग योग लो सुनियो लेकिन ख्याल तक कि भाई योग माध्यम दे ली काशंगा दो दो लन्नू तैंस दो लन सुनियो ख्याल तक कि भाई ओमी ओमी काशानु गरब तीगी बुजुर्गे लोशिमा या विद्वान लोशिमा तक मा दो योग माध्यम दें ची दोक दो को साधन लन भक्ति साधना लन सुनियो जूस काशानु गरब फायदा नहीं हो लेकिन ख्याल तक कि भाई कोष्टंग पंग काशा जिलामा तक मा जो माऊ तैंस वाल फायदेमंद नहीं हो थली कोष्टंग से चीज कशानु दो दुर्गामी परिणाम दो पुंग फायदा पुरे नहीं हो होदिस की भाई से ख्याल तक कि भाई तोरुक निपी ही कशंगा योग माध्यम ने प्रणन जो पुंग अपने आमा तंग मा जो दुर्गामी परिणाम कशान तैंस वाल फायदेमंद नहीं तो नहीं हो थोरुंग मतम कशा ख्याल तक कि भाई माँ सांदा सोम साशमु तैंस आलस आलस लनन या समय मानी समय तो तोली कशा लानी महान ना तंग माँ जो कशा तैंस नुकसानदायक नहीं हो लेकिन ख्याल तक कि भाई जो माध्यम जी जो कशा तो रो ख्यामा तंग माँ कि भाई गरब बुजुर्ग मी गाली तो योग लानो नहीं हो लेकिन ख्याल तक कि हाथ ली मी माउंट याऊ कुमो रोग पंग रोग मानी नी निरोग नी ग्याच नो जो बातंग पंग ताओ नहीं हो लेकिन कशा युवा पीढ़ी पंग जो पंग पीढ़ी दर पीढ़ी कशा ओम लानना तंग माँ जो कशा तैंस वाल फायदेमंद नहीं तो नहीं हो काश तो मग आई की थंग सुना चुक नहीं हो रंजीत भाई सी सुदर्शना ने ये रही कि जुगनु का दो जुगी था।

अभी आप आनंद ले रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम का। मिनी वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों ने योग दिवस में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।

0: 18वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित योग सत्र में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। राज्यपाल ने योग को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास करने पर बल दिया ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के 199 देशों में मनाया जाता है।
1: पूरा भारतवर्ष की जो परंपरा है उसको पूरा विश्व अपना रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 189 कंट्रीज में 2014 से ये प्रयास शुरू हुआ। स्वस्थ जो शरीर रहता है, स्वस्थ मन का परिचायक रहता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार से लेके समाज से लेके हर घर में योगा का प्राथमिकता दें और हमारी जो परंपरा है वो भी जीवित रहे।
0: रिज मैदान पर आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं हमीरपुर के अनु में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 2000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्वव्यापी जन आंदोलन बनाया है। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली का आधार बन गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की ये प्राचीन परंपरा आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा और स्वस्थ जीवन का आधार बन चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के जोल सप्पड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने इसी परिसर में नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इस राशि से इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती कर रही है। राज्य सरकार ने ऊना जिले के टाहलीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस स्टेशन में 16 नए पदों के सृजन सहित 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था करने को भी स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस निर्णय से टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र सहित पूरे हरोली विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन व आपदा प्रबंधन सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र में समग्र विकास व बेहतर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार चरमरा रही हैं। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 4 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के रुके हुए कार्य को शुरू नहीं करवा पाई है, जबकि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के भवन लगभग तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
3: चंबा में नए भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया, हमीरपुर में नए भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया, परंतु नाहन उस पुराने हमारे जो हॉस्पिटल है उसी के भरोसे अभी तक चल रहा है, जिसके कारण मरीजों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये विषय है और ये रहेगा, परंतु जो अत्यधिक चिंता का विषय है कि रोजमर्रा का हॉस्पिटल का काम वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा।
2: भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को विश्व मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

0: काम की बातों के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा फसल सुरक्षा यंत्रों का रखरखाव। मनोरंजन होगा लोकगीतों के माध्यम से और सुनवाई जाएगी जानकारी पूर्ण बातचीत।
1: तो चलते हैं कार्यक्रम के सफर पे। किसान साथियों, आप जो है इन दिनों बहुत सारे खेती बाड़ी के काम निपटा रहे होंगे और आपने जो है मक्की की बुआई कर ली है, कहीं कहीं पर अभी बुआई होनी है और अदरक की काश्त भी कर ली होगी और साथ ही बेलदार सब्जियां इत्यादि भी लगा लिए होंगे। तो अरविंद, देखे हमारे जो किसान हैं साल भर व्यस्त रहते हैं खेती बाड़ी के कामों में, और कृषि के कामों में जो है हम भी कार्यक्रम के माध्यम से उनकी मदद कर देते हैं और साथ ही उनका पशुधन खेती बाड़ी में उनका बहुत बड़ा सहायक है। लेकिन इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो उनकी सहायता करती है खेती बाड़ी के कामों में, तो बताएं वो क्या है।
0: तो देखिए सुरेखा, वो हैं खेती बाड़ी के यंत्र।
1: जी अरविंद, आपने सही कहा। तो हमारे किसान जो हैं इन दिनों ट्रैक्टर से खेती करते हैं, घास काटने के लिए भी मशीन है और भी तरह तरह के औजार हैं जो खेती बाड़ी के कामों में प्रयुक्त होते हैं। अभी जो है 1-2 महीने पहले थ्रेशिंग भी हुई है, तो उनके थ्रेशर भी जो है खेती बाड़ी में बहुत सहायक होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये यंत्र हैं, चाहे खेती बाड़ी के यंत्र है चाहे फसल सुरक्षा यंत्र है, हमारा हमेशा साथ दें, तो हमें इनका रखरखाव करना होगा, इनका ख्याल भी रखना जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं फसल सुरक्षा यंत्रों के रखरखाव के बारे में।
0: तो देखिए सुरेखा, वैसे तो फसल उत्पादन में बहुत सारे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फसल सुरक्षा यंत्रों के रखरखाव के बारे में। फसलों में खरपतवारों, कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए कई प्रकार के जहरीले रसायन प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के छिड़काव और बुरकाव यंत्रों की जरूरत पड़ती है। इन यंत्रों की अच्छी तरह से देखभाल, कीटों और बीमारियों की पूरी तरह से रोकथाम के लिए ठीक छिड़काव और छिड़काव करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल अरविंद, और अगर हम बात करें कि जो कृषि यंत्र हैं या फिर फसल सुरक्षा यंत्र हैं, तो उनका महत्व क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे जितने भी कृषि यंत्र हैं उनका जो प्रयोग है, समय पर कृषि कार्य संपन्न करने में हमारी मदद करता है। इनसे उत्पादन लागत भी कम होती है और इनके प्रयोग से जो है मानव श्रम पर भी निर्भरता कम होती है।
0: इसके साथ साथ कृषि कार्यों में एक रूपता आती है, तकनीकी कृषि कार्य करने में सहायक होते हैं और इसके अलावा भी कृषि यंत्रों के प्रयोग से कृषक विभिन्न रूपों से लाभान्वित हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और खेती को जो है मशीनीकृत करके उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और बाजारीकरण तक के सारे काम जो हैं सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से हम चला सकते हैं। इसके लिए जितने भी कृषि यंत्र हैं वो हमारी काफी मदद करते हैं और इन कार्यों में लगने वाली ऊर्जा और समय को कम करते हैं ये कृषि यंत्र, नहीं तो उत्पादन लागत में भी इससे दूरगामी असर पड़ते हैं। अब बात की जाए इनके रखरखाव में आवश्यक सुधारों के बारे में।
0: किसान भाई बहनों, कृषि कार्य करने के बाद कृषि यंत्रों को साफ सुथरे और सूखे स्थान पर रखें। आवश्यकता अनुसार इन पर तेल और ग्रीस आदि लुब्रिकेशन लगाते रहें। यंत्रों को उनकी कार्य क्षमता अनुसार ही प्रयोग करें। इसके अलावा विशेष कार्यों के लिए विशेष यंत्र का ही प्रयोग करें ताकि कार्य दक्षतापूर्वक संपन्न किया जा सके।
1: जी हाँ अरविंद, और रख रखाव में जो भी सावधानियाँ दी जाती हैं उनका खास ख्याल रखें, उनका पालन करें, और इसके अलावा यंत्रों के पास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना रखें, खासकर बिजली से चलने वाले थ्रेशर शेलर इत्यादि, इनके पास डीजल या केरोसिन तेल नहीं रखना है, और यंत्रों का जो है प्रयोग आप निर्देश अनुसार ही करें। समय समय पर इनको खास तौर से प्रयोग से पहले और उसके बाद अच्छे से इनकी पुर्जों की जांच जरूर कर लें, और यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए या उसका प्रशिक्षण उन्हें होना चाहिए।
0: इसके अलावा यंत्रों का प्रयोग करने के दौरान आवश्यक और निर्देशित वस्त्र ही पहने। अन्य सुरक्षात्मक साधनों का जैसे पानी और रेत आदि साधनों को कार्य करते समय पास रखें। यंत्रों का प्रयोग करते समय केवल कुशल श्रमिकों को ही सहायक के रूप में काम पर रखें। इसके अलावा किसान भाई बहनों, छोटे बच्चों को यंत्रों के पास न आने दें।
1: जी बिल्कुल अरविंद, और ये सारे सुझाव जो हैं सामान्य मार्गदर्शक हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम कई बार इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन्हीं का ख्याल रखते हुए हमारा जो काम है सुचारू रूप से चल सकता है। तो जैसे कि आपने अभी थ्रेशिंग की है, तो आपने थ्रेशर की साफ सफाई कर ली होगी अच्छे से, और उम्मीद है उस पर अच्छे से पेंट इत्यादि भी कर लिया होगा, उसके अंग पुर्जों को धूप में रखकर साफ करके और संभाल

0: स्वागत आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। 7:10 हो चुके हैं। लीजिए पेश है किसान और बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान साथियों को हमारा प्यार भरा
2: नमस्कार। आज के इस अंक में मैं हूं अरविंद
1: और अरविंद के साथ मैं हूं सुरेखा, लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। तो अरविंद, लगे हाथों ये बता दीजिए कि क्या कुछ रहने वाली है कार्यक्रम की झलकी।

0: अगर आपने अगले साल के लिए रख लिया होगा। इसी तरह से ट्रैक्टर भी इन दिनों आप ज्यादातर प्रयोग में लाते हैं, तो समय समय पर उनकी ग्रीसिंग ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है और उनको भी साफ करके धूप इत्यादि में रखना बहुत जरूरी है। और आप इनको ढक कर जरूर रखें ताकि आने वाले बरसातों में जो है इन पर जंग ना लग जाए। अब बात करते हैं एक ऐसे यंत्र की जो कि वर्ष भर जिसका प्रयोग किया जाता है, वो है फसल सुरक्षा यंत्र। तो इसके रखरखाव के बारे में भी कुछ एक सावधानियाँ होनी चाहिए। वैसे भी हम कई बार आपको बताते हैं कि रासायनिक छिड़कावों के दौरान आपको किस तरह से स्प्रेयर इत्यादि, पंप इत्यादि का इस्तेमाल करना है। तो अब बात की जाए कि इनके सामान्य दोष और निदानों के बारे में भी आपको क्या जानकारी होना जरूरी है।
1: बात करते हैं छिड़काव यंत्र के सामान्य दोष और निदान के बारे में। किसान भाई बहनों, छिड़काव से पहले नोजल को ढीला करके साफ कर लें। प्रयोग से पहले चमड़े की वॉशर को सरसों के तेल में भिगो लें। अगर घोल नोजल से अच्छी तरह से बाहर ना आए तो नोजल के सिरे, डिस्क कैप, वॉशर और पैकिंग आदि की जांच करें और टूटे फूटे या दोष मुक्त भागों को बदल दें। अगर विच्छेदक कपाटी में रिसाव हो रहा हो तो वफर वॉशर, वॉल्व स्टैप और पैकिंग की जांच करके दोषयुक्त भागों को बदल दें।
0: जी अरविंद, इसके साथ ही छिड़काव छड़ी की नली में रिसाव होने की स्थिति में इसे अच्छी तरह से कस दें। मुड़ी हुई या टूटी हुई छिड़काव छड़ी को आप बदल दें। टंकी, चूषण नली या निकास नली से रिसाव होने पर इसकी मरम्मत जरूर करवाएं और इनके नट इत्यादि को दोबारा से कस दें।
1: इसके अलावा छिड़काव यंत्र के सभी घूमने फिरने वाले और घर्षण वाले पुर्जों में आवश्यकता अनुसार चिकनाई या ग्रीस डाल दें। किसान भाई बहनों, दाव पैदा करने वाले पंप में ठीक दबाव ना बनने के परिणाम स्वरूप छिड़काव ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए यंत्र की अच्छी कार्य विधि के लिए इसका वायु अवरोधक होना बहुत आवश्यक है।
0: जी अरविंद, ये तो सामान्य निदानों के बारे में बात हो गई। अब बात की जाए रखरखाव के बारे में, तो छिड़काव का काम खत्म करने के बाद इसके भीतरी भाग को साफ करने के लिए इसमें साफ पानी डालकर चलाएं और इसे बाहर से भी साफ जरूर करें। जालियों और अलग होने वाले पुर्जों को साफ करके सुनिश्चित जगह पर लगा दें। टंकी में दवा का घोल हमेशा छानकर ही डालें और हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी का 3/4 भाग ही भरें और टंकी से हवा धीरे धीरे निकालें ताकि रसायन तेजी से बाहर ना निकले।
1: जी सुरेखा, इसके अलावा यंत्र को लंबे समय तक प्रयोग ना करने की स्थिति में चमड़े की वॉशर को तेल लगा के रखें। पंप की बैरल से निकास नली और प्रसार नली को खोलकर पंप और टोंटी सहित रखना चाहिए।
0: अब बात करें कि आपको कब क्या करना चाहिए। इंजन के पेट्रोल में अनुमोदित मात्रा में स्नेहक तेल डालें और स्पार्क प्लग और कॉन्टैक्ट ब्रेक पॉइंट की दूरी की जांच हर 100 घंटे काम करने के बाद जरूर करें। साइलेंसर और हेड से 50 घंटे कार्य और पिस्टन और सिलेंडर से 200 घंटे कार्य के बाद जमी हुई कार्बन को निकाल दें। छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को 200 घंटे काम करने के बाद खोलकर पूरी तरह से साफ कर दें। साथ ही इंजन के फिन्स को साफ करना भी बहुत जरूरी है। तो किसान साथियों, ये तो बात हो गई फसल सुरक्षा यंत्रों के साथ साथ अन्य कृषि यंत्रों के भी रखरखाव के बारे में। कार्यक्रम में हमारी बातचीत आज के लिए बस इतनी ही। तो अब आगे बढ़ते हैं अरविंद और चलते हैं मनोरंजन के सफर पे।
1: तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं राजेंद्र कुमार की आवाज में ये

0: किसान साथियों, मनोरंजन के बाद पुनः समय है जानकारी का, जो कि प्रस्तुत की जाएगी बातचीत के माध्यम से।
1: आज की जानकारी पूर्ण बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर देशराज और जानकारी हासिल करेंगी कुमारी पूर्णिमा।
0: और इस जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय है कीवी फल की खेती, प्रबंधन और व्यवसाय। आइए सुनते हैं इस जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण।
2: किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देशराज जी। आज हमें जानकारी देंगे कीवी फल की खेती, प्रबंधन और व्यवसाय के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर देशराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद किसान भाइयों और बहनों।
2: जिस तरह बात की हमने कीवी फल की खेती, प्रबंधन और व्यवसाय के बारे में, सबसे पहले जो हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के दिमाग में जो प्रश्न होता है वो होता है कि किस तरह इसका इतिहास रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें आप।
3: किसान भाइयों और बहनों, कीवी फल वास्तव में हिमाचल प्रदेश में सन 1965 में आया है, लेकिन यह फल चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति चीन देश में हुई है। इसका प्रसार चीन से न्यूजीलैंड में 1906 में ये फल ले जाया गया। वहाँ न्यूजीलैंड के किसान बागवानों के अथक प्रयास से 1940 में व्यावसायिक खेती प्रारंभ की गई, लेकिन इसे चाइनीज गूसबेरी नाम से जाना जाता था। बाजार में इसको बेचने में न्यूजीलैंड वालों को बहुत दिक्कत आई, अपने राष्ट्रीय कीवी पक्षी के नाम पर कीवी फल रखा और यह फल 1960 में कुछ पौधे भारतवर्ष में बेंगलोर के लाल बाग में लगाए गए, लेकिन वहां पर फल पौधे तो चले, उसमें फल नहीं लगे। 1965 के आसपास ये फलदार पौधे हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में फागली में और उसके साथ नजदीक मशूबरा में लगाए गए और वहां पर इन फलदार पौधों में फल लगे और 69-70 में इसमें अच्छी फसल आई।

0: तो इस तरह कीवी फल की उत्पत्ति हुई। और किसान भाइयों देखिए, कीवी फल एक बहुत ही पौष्टिक फल माना जाता है। और हमारे स्वास्थ्य की बात करें या फिर हमारे शरीर के विकास की बात करें, उसमें भी इसका काफी योगदान रहता है। तो इस तरह देखिए, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसमें किस तरह लाभदायक है?
1: कीवी फल देखने में चीकू की तरह रोएदार फल है और इसका पौधा एक बेल के रूप में लगता है सर्दियों में, जिसके पत्ते गिर जाते हैं। यह फल अति स्वादिष्ट और स्ट्रॉबेरी की तरह सुगंध देने वाला जब पकने पर देता है, और विटामिन सी इसमें संतरे से लगभग 2 गुना ज्यादा है। इस फल में अन्य लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी जो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक आवश्यकता होती है, ये सभी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते
0: जी
1: हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। अभी अध्ययन में पाया गया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों को हृदय के मरीज हैं, वो लोग जो डिस्प्रिन की गोली लेते हैं, यदि वह 2-3 फल कीवी फल 28 दिन तक खाते हैं तो उन्हें डिस्प्रिन की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा यह मधुमेह रोगियों के लिए भी अति उत्तम है और सभी प्रकार के वर्गों को, और महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी के लिए फल अति पोषणीय और उनके लिए लाभदायक है।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही। मधुमेह रोग जिनको है उससे भी छुटकारा हमारे किसान भाई पा सकते हैं। अगर बात करें कीवी फल के जलवायु की, जब भी हमें इसे उगाना चाहे, हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगाना चाहे, तो किस तरह की जलवायु हमारे किसान भाइयों को चाहिए और किस तरह इस पर कार्य वो कर सकते हैं?
1: पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छा उत्तम प्रश्न किया और ये किसान भाई बहनों के लिए जानना अति आवश्यक है कि कीवी के फल को हम अपने प्रदेश में कहाँ उगा सकते। वास्तव में कीवी के लिए समशीतोष्ण और उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल और सब टेम्परेट के जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें 900 मीटर से लेके 1800 मीटर के मध्य का जो हमारा पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें कीवी के फल की सफल खेती की जा सकती है। जहाँ पर वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है, पौधे की शीत घंटों की जो आवश्यकता है 600 से 800 घंटे की वो पूर्ण हो जाती है। भूमि है वहाँ उसकी, वो बलुई दोमट, सभी प्रकार की भूमि उगाया जा सकता है, लेकिन बेहतर भूमि वही होगी जो बलुई दोमट होगी और जिसमें पानी का निकास अच्छा होगा, और इसके लिए पीएच मान उसका 7 से कम, 6, 6.5 के आसपास होगा। उस भूमि में इस कीवी के फल को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
0: जी अगर बात करें इसकी प्रजातियों के बारे में, तो कीवी में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है जो कि हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं?
1: किसान भाइयों और बहनों, कोई भी फल अगर हम लगाएं तो उस फल में की कौन सी प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त होगी, यह विशेषज्ञों से जानना अति आवश्यक है। कीवी में भी हमारे प्रदेश में 5 प्रकार की प्रजातियां उगाई जा रही हैं, जिसमें एलिसन, एबॉट, मोंटी, ब्रूनो, हेवार्ड। यह एक लिंगीय पौधा है, इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। एलिसन, एबॉट, मोंटी और ब्रूनो के लिए एलिसन नर पौधे का प्रयोग किया जाता है, और जबकि हेवार्ड प्रजाति के लिए तोमूरी नर पौधे के साथ इसको लगाया जाता है, और इनके लगाने का जो अनुपात है वो 1:8, 1:7 या 1:10 के अनुपात में पौधों के साथ लगाए जाते हैं।
0: जी जो हमारे किसान भाई इस तरह की किस्में लगाएंगे तो उनकी जो आर्थिकी है वो भी बहुत अच्छी तरह सुधर सकती है। देशराज जी, अगर कीवी फल का प्रवर्धन या फिर प्रसारण कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को आप दें।
1: कीवी फल का प्रवर्धन और प्रसारण, इसके लिए 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं, एक कलम के द्वारा और दूसरा बीज के द्वारा, जिसमें बाद में कलम की जाती है, चश्माबंदी की जाती है। कलम अगर हमने लगानी है तो हम कलम लगाने के लिए लगभग 9 से 10 इंच की कलम लेते हैं और उसको काट कर उसमें 3 या 4 आंखें होनी चाहिए। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA 4000 से 5000 PPM का हो, उसमें 10 सेकंड के लिए डुबोने के बाद क्यारियां बनाई जाती हैं और उन क्यारियों में लगाया जाता है। और ये कलम अगर हमारे पास फुहार कक्ष हो, मिस्ट चैम्बर हो, उसमें लगाएं। रेत और मिट्टी, गोबर और कंपोस्ट बराबर अनुपात में मिलाकर क्यारियां बनाई जाए, उसमें लगाने से ये कलमें सफलतापूर्वक चलती हैं।
0: जी
1: दूसरा इसमें विधि है बीज के द्वारा। बीज में पौधे फलों से जब फल पक कर तैयार हो जाते हैं तब हम उनसे बीज निकाल लेते हैं, उस बीज को स्तरीकरण करते हैं। बीज लगभग 1 किलोग्राम में 6, 7, 8 ग्राम के आसपास निकलता है, और उस बीज को रेत के साथ मिला के हम रेफ्रिजरेटर में लगभग 0 से 4 डिग्री तापक्रम पर 4 से 6 सप्ताह के लिए रख लेते हैं। फिर फरवरी मार्च में उस बीज की बिजाई कर दी जाती है। इसके पश्चात उससे पौधे निकलते हैं और उन पौधों को दूसरी क्यारी में, नर्सरी को, पौधों की नर्सरी को दूसरी क्यारी में परिवर्तित करके ले जाकर जब वो 4 पत्तियां छोटी छोटी आने लगती

0: देती हैं, तो उसके पश्चात खाद पानी पर्याप्त मात्रा में देने के पश्चात ये पौधे एक वर्ष के बाद कलमबंदी करने के लिए तैयार होते हैं। और ये कलमबंदी फरवरी मार्च में जीवा कलम द्वारा या कलिकाइन चिप बडिंग के द्वारा पौधों को आगे तैयार किया जा सकता है।
1: जी, बहुत अच्छी आपने बात की इसके प्रवर्धन और प्रसारण के बारे में। देखिए, अगर जब भी हम कीवी फल लगाते हैं तो उसके पौध रोपण में किस तरह की सावधानियां हमारे किसान भाइयों को बरतनी पड़ती है?
0: पूनम जी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि सदैव ही किसी भी फलदार पौधे का बगीचा लगाना है तो उसकी जो पौध रोपण का कार्य है वह अति उत्तम तरीके से होना चाहिए। कीवी फल में भी पौध रोपण के लिए सर्वप्रथम जो गड्ढा किया जाता है लगाने के लिए वो पर्याप्त आकार का होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए एक घन मीटर अर्थात एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा, एक मीटर गहरा, या दूसरे शब्दों में कहें 3 फुट से अधिक लंबा, 3 फुट से अधिक चौड़ा और गहरा गड्ढा किया जाना चाहिए। उस गड्ढे की आधी मिट्टी एक तरफ ऊपर की और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ। जो ऊपर की आधी मिट्टी है उस मिट्टी में गोबर की लगभग 30 से 40 किलो खाद मिलाकर, अच्छी गली सड़ी खाद, अगर केंचुआ खाद है तो 5 से 6 किलो, और उसमें 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाकर ऊपर वाली मिट्टी में अच्छा मिश्रण बनाकर उसे नीचे डाल दिया जाता है और उसके ऊपर जो नीचे की आधी मिट्टी है उसको लगाकर रख दिया जाता है। इस प्रकार गड्ढा भरने के पश्चात उसके मध्य में एक लकड़ी का लगभग 3 फुट लंबा डंडा लगा देना चाहिए। वो ये निशान बताता है कि गड्ढे का सेंटर या मध्य पीच का भाग यह है। और इसके पश्चात जब आप अच्छी नर्सरी से, रजिस्टर्ड नर्सरी जहां पर स्वस्थ पौधे हों, रोग रहित हों, अच्छी प्रजाति के हों जो आपके क्षेत्र में लगनी है, उसको वहां पर अगर लगाया जाए तो वो उस पौधे को फरवरी मार्च में सफलतापूर्वक बिना मिट्टी के और लेकर, क्योंकि इसके पत्ते गिर गए होते हैं उसमें, उस वक्त इस पौधे को लगाया जा सकता है। इसके अलावा पॉलीथीन बैग में है तो बरसात के मौसम में भी इसका पौधरोपण किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर जी, ये तो बात की आपने पौध रोपण के बारे में। देखिए, अगर कोई भी पौधा है, जैसे कि सेब की बात करते हैं, नाशपाती की बात करते हैं, उनकी सिधाई और कांछाट हमारे किसान भाई करते हैं, इसी के साथ ही जो कीवी फल है उसकी सिधाई और कांछाट के बारे में बात करें तो उसका क्या महत्व है?
0: कीवी में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं और सिर्फ फल मादा पौधे में लगते हैं, नर पौधे परागण के लिए आवश्यक हैं। इसमें सिधाई के लिए जब हम लगाते हैं तो ट्रेली सिस्टम, एक टी बार सिस्टम लगती है और एक परगोला सिस्टम लगता है। ट्रेली सिस्टम में पौधे को सीधा तैयार करके लगभग 6 फुट तक उस पौधे को सीधा रखते हैं, उसके बाद उसे 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं और आगे जाकर फिर उसकी प्रूनिंग करते हैं जिससे अधिक से अधिक उसमें शाखाएं बने और मादा पुष्प है वो ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन इसके जो पहले 9 से 10 कलिकाएं होती हैं एक वर्ष पुराने शाखा में, उसी में फल लगते हैं, इसलिए हमें वह कटिंग इस हिसाब से करनी चाहिए कि 4 या 5 आंखें बच जाएं जिसमें फल लगेंगे।
1: जी, तो इसी के साथ जो खाद और उर्वरक की मात्रा होती है वो कितनी कितनी हमारे किसान भाइयों को लेनी होती है?
0: किसान भाइयों, अगर हम कीवी की बात करें तो इसमें 5 वर्ष का जो पौधा है उसमें लगभग 800 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटेशियम के हिसाब से खाद दी जाती है, और लगभग 5 वर्ष पुराने पौधे में 30 से 40 किलो अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद प्रयोग करनी चाहिए।
1: जी, ये तो बात की आपने पौधों की सिधाई के बारे में भी और खाद और उर्वरक की मात्रा के बारे में भी। तो डॉक्टर जी, जब भी हमारा फल पक के तैयार हो जाता है उसका तुड़ान हमारे किसान भाई करते हैं तो उस समय काफी विशेष मात्रा में ध्यान देने वाली बात होती है। जब भी तुड़ान होता है तो उसका जो हम श्रेणीकरण करते हैं, भंडारण करते हैं, तो उन पर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है?
0: अगर कीवी का फल जब तैयार होता है, यह फल लगभग 190 से 200 दिन तैयार होने में ले लेता है। अप्रैल माह में इसमें फूल आते हैं और यह नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर तृतीय सप्ताह तक प्रजाति के अनुसार चलता है। तो इसकी तुड़ाई के लिए अगर ये फल अगर समय से पूर्व तोड़ा जाए तो इसमें वो गुण विकसित नहीं होते हैं। यदि इसे नवंबर माह में आप तोड़ते हैं तो यह फल सख्त होता है और तोड़ने के पश्चात इसके फल के ऊपर रोएं होते हैं, इसको तोड़ने के पश्चात रखते हैं तो यह पकता है। और इसका भंडारण हम 40 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस में करें तो और 90% आर्द्रता हो तो इसका भंडारण 4 महीने तक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। एक इसमें ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप बाजार में अपना फल ले जाते हैं तो ग्रेड करना आवश्यक है। अगर जो 100 ग्राम का फल है वो ए ग्रेड में आता है और जो फल आपका 60-70 ग्राम का है वो बी ग्रेड में आता है और 50 ग्राम से 70 ग्राम के बीच में है या 50 ग्राम से नीचे है उसके सी ग्रेडिंग, ऐसे करके आप अपने फलों का श्रेणीकरण करके बाजार में अच्छे छोटे छोटे 3 से 4 किलो के डब्बे की पैकिंग में ले जाकर कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों, अगर आपकी पैकिंग

0: अच्छी है तो आप अच्छे दाम भी ले सकते हैं, क्योंकि बाजार भाव की बात करें या फिर मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब भी आप पैकिंग आपकी अच्छी हो तो आपके ग्राहक है वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर बात करें कीवी के कीट और रोग के बारे में तो डॉक्टर जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कीवी में कौन से रोग और कीट लगते हैं।
1: विशेष रूप से जो भी फलदार पौधे हम उगाते हैं उसमें कीट और रोग काफी नुकसान करते हैं, लेकिन सौभाग्य से कीवी एक ऐसा फल है जिसमें बहुत कम कीट और रोगों का प्रकोप होता है। अगर रोगों की बात करें तो इसमें जड़गलन और कॉलर रॉट, क्राउन रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत कम मात्रा में इसमें प्रभाव डालते हैं, और यह रोग यदि इसमें आते हैं तो किसान भाई इनके उपचार के लिए बेवस्टीन कार्बेंडाजिम, M45 कार्बेंडाजिम, आधा ग्राम M45 ढाई ग्राम का स्प्रे कर सकते हैं। अगर ड्रेंचिंग करनी पड़ती है, अगर कहीं पर हमारे पौधों में जड़ गलन लगा हुआ है तो उसमें ड्रेंचिंग के लिए 1 ग्राम बेवस्टीन और 3 ग्राम M45 या कैप्टाव की दवाई के साथ ड्रेंचिंग करके पौधों को बचा सकते हैं। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आ रही है या बैक्टीरियल डिजीज लगी हुई है तो उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की दवाई हम 3 ग्राम 10 लीटर में डालकर छिड़काव इन पौधों पर किया जा सकता है।
0: जी, तो किसान भाइयों अगर इस तरह के रोग आपकी कीवी फल में लग जाते हैं तो आप इन दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं और रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर जी आपसे जानना चाहेंगे कि कीट कौन कौन से इन फलों पर अक्सर देखने को मिलते हैं।
1: इस फल के ऊपर रोएं होते हैं और पौधा जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी पत्तियां सर्दियों में गिर जाती हैं और बसंत ऋतु में दोबारा नए इसमें कल्ले आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कीटों का भी प्रकोप नहीं होता है, लेकिन यदि इसमें तिमुरन कीट लगा हो तो हम उसके लिए मेटासिस्टॉक्स या मेटासिड 1 बूंद 1 लीटर में 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी, यदि इस पौधे में ग्रेडी स्केल के लिए हम जो अपने तेल का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें ऑर्चर्ड स्प्रे ऑयल्स होते हैं जो लगभग 20 ml 1 लीटर की दर से अगर हम उसमें स्प्रे करते हैं परिस्थितियों के अनुसार उस रोग का निदान किया जा सकता है।
0: जी, तो किसान भाइयों इस तरह आप रोग और कीट से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर देसराज जी आप हमारे स्टूडियो में आए और कीवी फल की खेती प्रबंधन और व्यवसाय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं और किसान भाइयों को दी, इस सब जानकारी के लिए आपका तह दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहन अभी सुन रहे थे जानकारी पूर्ण बातचीत, विषय था कीवी फल की खेती व्यवसाय और प्रबंधन।
3: बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर देशराज, जिनसे बातचीत कर रही थी पूर्णिमा। तो किसान साथियों अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर जो कि है गीत संगीत भरा। आइए सुनते हैं पहाड़ी गीत वनिता ठाकुर की आवाज में।

0: आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रदेश में भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योग को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास करने पर दिया बल। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च करेगी 150 करोड़ रुपए की राशि। और देश विदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई नीट परीक्षा, 22 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए शामिल।

0: अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों ने योग दिवस में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित योग सत्र में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। राज्यपाल ने योग को हर घर तक पहुँचाने की दिशा में प्रयास करने पर बल दिया ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के 199 देशों में मनाया जाता है।
2: पूरा भारतवर्ष की जो परंपरा है उसको पूरा विश्व अपना रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 189 कंट्रीज में 2014 से ये प्रयास शुरू हुआ। स्वस्थ जो शरीर रहता है, स्वस्थ मन का परिचायक रहता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार से लेके समाज से लेके हर घर में योगा का प्राथमिकता दें और हमारी जो परंपरा है वो भी जीवित रहे।
1: रिज मैदान पर आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं हमीरपुर के अनु में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 2000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्वव्यापी जन आंदोलन बनाया है। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली का आधार बन गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की ये प्राचीन परंपरा पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा और स्वस्थ जीवन का आधार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर से लाखों लोग योग और वेलनेस से जुड़ने के लिए भारत आ रहे हैं और ऋषिकेश, वाराणसी व मैसूर जैसे योग केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिससे वेलनेस टूरिज्म सुदृढ़ हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के जोल सप्पड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने इसी परिसर में नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इस राशि से इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भर्ती कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमीरपुर के नादौन में करीब 125 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को इसी वर्ष प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। वे हमीरपुर के अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवा खिलाड़ियों व अन्य बच्चों के साथ आज एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस इंडोर स्टेडियम में 14 तरह की खेल गतिविधियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। ये अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई।

0: शिक्षा के सुचारू सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। राज्य सरकार ने ऊना जिले के टहलीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस स्टेशन में 16 नए पदों के सृजन सहित 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था करने को भी स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस निर्णय से टहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र सहित पूरे हरोली विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन व आपदा प्रबंधन सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र में समग्र विकास व बेहतर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि पारंपरिक मेले हमारी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। कसुमटी विधानसभा क्षेत्र की जनेड़ घाट पंचायत के भलावग में आज एक मेले के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों के आपसी मेल मिलाप के साथ साथ सामुदायिक व व्यापारिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। स्थानीय विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों व पेयजल विकास सहित कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार चरमरा रही हैं। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 4 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के रुके हुए कार्य को शुरू नहीं करवा पाई, जबकि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के भवन लगभग तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।
1: चंबा में नए भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया, हमीरपुर में नए भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया, परंतु नाहन उस पुराने हमारे जो हॉस्पिटल है उसी के भरोसे अभी तक चल रहा है, जिसके कारण मरीजों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये विषय है और ये रहेगा, परंतु जो अत्यधिक चिंता का विषय है कि रोजमर्रा का हॉस्पिटल का काम वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा।
0: भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को विश्व मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात का प्रमाण है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 151 स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया है, जिनमें शिमला जिले के 24 स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों में खेल, कला, संस्कृति, संचार कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी और जीवन कौशल पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस पहल से सरकारी विद्यालयों में ही आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योग को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास करने पर दिया बल। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च करेगी 150 करोड़ रुपए की राशि। और देश विदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई नीट परीक्षा, 22 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जानें।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी

ये सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को भरने हेतु अंशकालिक अथवा घंटे के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर 12 पद, पैराफिटर 3 पद, मल्टीपर्पज वर्कर 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30/6/2026 सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ में भेज सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को भरने हेतु अंशकालिक अथवा घंटे के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर 12 पद, पैराफिटर 3 पद, मल्टीपर्पज वर्कर 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30/6/2026 सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ में भेज सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हाजिर एक बार फिर से आप सभी के लिए एफएम शिमला पर लेकर ढेर सारे तराने, कुछ नए तो कुछ पुराने होंगी, आपसे ढेर सारी बातें भी सुनवाएंगी, कुछ बेहतरीन नगमे आप सभी को, क्योंकि आज का दिन है बेहद खास, तो बातें तो होगी दिलचस्प ही। कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे भूले बिसरे गीत के साथ, सुनवाएंगे कुछ बेहतरीन नगमे आप सभी को। लेकिन दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी छाया हमें हर कठिनाई से बचाती है, वो हौसला जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और उनका विश्वास जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है। कौन है वो? जी हाँ, वो है पिता यानी के पापा, क्योंकि आज है फादर्स डे, और ये केवल एक दिन नहीं बल्कि अपने पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करने का एक अवसर है। यूं तो हर दिन माता पिता के लिए ही है और हर पल उन्हीं को समर्पित है, लेकिन कभी कभी कुछ खास पल अगर हम उन्हें देते हैं, समर्पित करते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। जी हाँ, आज का दिन समर्पित करते हैं अपने पिता को, अपने पापा को, जिन्होंने खुद धूप में खड़े होकर हमें छाया दी, खुद संघर्ष करके हमें आसान जीवन दिया। तो आइए इसी खास दिन पर सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत आप सभी को, लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित और साथियों की आवाजों में तकदीर फिल्म का ये गीत। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है शायद ये पल निकल जाते हैं, लेकिन बचपन के वो दिन जब हर बच्चा जो है उसका दिल यही पुकारता है,

जी बिल्कुल दोस्तों, जीवन में सपने तो हमारे होते हैं, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई हमें बता रहा होता है, और वो होते हैं हमारे पापा।

माता पिता का आभार व्यक्त करना यूं तो आसान नहीं है। ये वो कर्ज है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके लिए कुछ शब्द, कुछ आभार तो हम व्यक्त कर ही सकते हैं। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, जिद पूरी हो जाती है सब कर पिता का साथ होता है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा नगमा आप सभी को सुनवाते हैं। सुमन कल्याणपुर और साथियों के आवाजों में लीजिए पेश है जहां प्यार मिले फिल्म का ये नगमा।

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

0: शतरंज फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं FM शिमला पर। अगला गीत सुनवाते हैं लेकिन इस संदेश के बाद।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: की से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: मोहम्मद रफी मन्ना डे को आपने सुना फिल्म सच्चाई से। सुन रहे हैं आप भूले बिसरे गीत आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी आई

0: PI, Polytechnic, Nursing, Engineering, Medical, Management, Law, Post Graduation और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जी बिल्कुल, ज़िंदगी में माता पिता का होना ही सबसे बड़ा तोहफा है, और मंजिल दूर सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी में फिक्र बहुत है, माँ डालती ये दुनिया ना जाने कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। बिल्कुल सही है ये बात दोस्तों, जहाँ माता पिता जिस घर में होते हैं ना, उस घर में दुआएं इतनी होती है कि कोई मुसीबत किसी को छू ही नहीं सकती। फादर्स डे के इस विशेष दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन और भी खास है, लेकिन इस विषय पर भी हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं और समय है फिल्म संगीत का। तो आइए आगाज कर रहे हैं हम कार्यक्रम का इस गीत के साथ। मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: बेहद ही खूबसूरत नगमा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोस्तों, आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हम तीन महत्वपूर्ण अवसरों का उत्सव मनाते हैं, विश्व संगीत दिवस, फादर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संगीत हमारे जीवन की वो मधुर धुन है जो मन को शांति, खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करती है। संगीत की भाषा धर्म और सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। आज का दिन हमें संगीत की इस अनमोल शक्ति का सम्मान करने का अवसर देता है।
1: देर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।
0: उदित नारायण और साथियों की आवाजों में पेश है एक प्यारा सा गीत हमराज फिल्म से।

0: उदित नारायण सपना मुखर्जी को। लीजिए सुनिए यलगार फिल्म से।
1: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: दोस्तों, गीत तो बेहद ही प्यारा है, लेकिन क्या करें, घड़ी की सुई इशारा कर चुकी है और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 आप सुनेंगे न्यूज एट 9। आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित

0: भाषाओं में आयोजित की गई।
1: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2 स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक

0: समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Highlighting the International Yoga Day theme for this year, Yoga for Healthy Aging, she said it underlines the importance of yoga, is a celebration of India's great tradition, and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life.

स्वागत आप सभी का एक बार फिर से 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। हाजिर हैं आपके लिए लेकर कार्यक्रम एक फिल्म से।

प्यार, जी हाँ मोहब्बत, एक ऐसा एहसास जो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। जब दिल किसी के लिए धड़कता है ना, तो हर खुशी उस इंसान से जुड़ जाती है। और एक ऐसी ही प्रेम कहानी लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक फिल्म से।

फिल्म में राहुल नाम का एक नेक दिल और हंसमुख सा लड़का है। वो राधिका से बेहद ही प्रेम करता है और उसे पाने का सपना देखता है। राधिका भी एक अमीर परिवार की ही लड़की है, जो शुरुआत में राहुल के प्यार को

कहानी दो पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार के मुखिया सेठ जी है और दूसरे भी जो है वो काफ़ी अमीर परिवार से ही है। राहुल सेठ जी का बेटा है। पढ़ाई पूरी करके वो हाल ही में अपने गांव लौटा है। राधिका देवयानी जी की बेटी है और गांव से आई है, लेकिन राधिका जो है वो बेहद ही खूबसूरत है। लीजिए गीत सुनिए और पहचानिए हमारी आज की फिल्म।

0: जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। आज की हमारी फिल्म है हम तुम पे मरते हैं। प्यार की राह दोस्तों कभी आसान नहीं होती। जब दो दिल मिलते हैं तो अक्सर समाज, परिवार और परिस्थितियाँ उनकी परीक्षा लेती है। ऐसी ही एक खूबसूरत प्रेम कहानी हम भी लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसका नाम है हम तुम पे मरते हैं। फिल्म की कहानी जैसा कि आपको बताया कि दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है शिव कुमार उर्फ सेठ जी का परिवार और दूसरी तरफ है दिव्यानी का परिवार। दोनों परिवार के बीच पुरानी अनबन और विचारों का टकराव है। सेठ जी का बेटा राहुल पढ़ाई पूरी करके लौटा है। दिव्यानी के परिवार में राधिका है। राहुल और राधिका की मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूजे से प्यार कर बैठते हैं। कहानी और भी है, लेकिन आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और राहुल और राधिका एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में सबसे बड़ी रुकावट बनती है दिव्यानी। वो राहुल को राधिका के योग्य नहीं मानती है और अपनी पसंद के अमीर तथा प्रभावशाली व्यवसायी धनंजय से जो है उसकी शादी करना चाहती है। इसके बाद राहुल अपने प्यार को साबित करने के लिए संघर्ष करता है। उसे न केवल धनंजय का सामना करना पड़ता है बल्कि दिव्यानी का विश्वास भी जीतना पड़ता है। कई हास्यपूर्ण घटनाओं और इमोशनल्स मोमेंट्स के बाद और इतने सारे स्ट्रगल के बाद राहुल की सच्चाई और उसके प्रेम की जीत होती है। दिव्यानी अंत में मानती है और राहुल राधिका एक हो जाते हैं।

90 के दशक का सुपरहिट गीत, जी हाँ, एक बेहद ही प्यारा और रोमांटिक सॉन्ग। इस गाने को उदित नारायण और लता मंगेशकर ने अपनी खूबसूरत आवाज दी थी, जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत उत्तम सिंह का था। दोस्तों, गोविंदा और उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी उस समय काफी लोकप्रिय थी। दर्शकों ने दोनों की केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया था। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और फैमिली ड्रामा जो है वो देखने को मिलता है, जो 90 के दशक की फिल्मों की खास पहचान थी। परेश रावल और डिंपल कपाड़िया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस फिल्म में, जिन्होंने कहानी को और भी मजबूत बनाया।

था। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया था और कई गीत उस दौर में काफी पसंद भी किए गए थे। ये फिल्म गोविंदा की उन फिल्मों में गिनी जाती है जिनमें उनकी कॉमेडी के साथ साथ रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिलता है। इस फिल्म में पिता और पुत्र के प्रेम को भी बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है।

0: साथ ही दोस्तों आपको बताएं कि फिल्म की शूटिंग में रंग बिरंगे सेट और भव्य लोकेशंस को जो है वो उनका इस्तेमाल इसमें किया गया था, जो 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की खास पहचान थी। फिल्म में परिवारों की दुश्मनी, प्रेम कहानी का मेल कहीं ना कहीं दर्शकों को पुरानी क्लासिक प्रेम कहानियों की याद दिलाता है। साथ ही इस फिल्म में परेश रावल ने अपने अभिनय से कहानी में हास्य और इमोशंस दोनों रंग भर दिए थे। फिल्म के गीत संगीत में 90 के दशक की मिठास साफ झलकती है। उस समय शादी ब्याह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसके गाने बहुत सुनाई देते थे। फिल्म का शीर्षक हम तुम पे मरते हैं अपने आप में प्रेम की गहराई को दर्शाता है और यही भावना पूरी कहानी में देखने को मिलती है। और सबसे शानदार गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग और डांस स्टाइल फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक मानी जाती है। बातें बहुत हैं, क्या क्या बताएं। जी हाँ, फिल्म का संदेश ये भी है कि रिश्ते धन दौलत से नहीं जनाब, बल्कि विश्वास, सम्मान और सच्चे प्रेम से मजबूत बनते हैं।
1: क्या मैं कोई गर हूँ, पहली नजर का था प्यार, डैडी प्लीज प्लीज थोड़ा करो।
0: दोस्तों बस अंत में यही कहेंगे कि हम तुम पे मरते हैं फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, संघर्ष और सच्चे प्यार की जीत की कहानी है, जो आज भी 90 के दशक के सिनेमा प्रेमियों को याद है। आप भी जरूर कभी समय निकाल कर इस फिल्म को जरूर देखिएगा। परिवार के साथ मिलकर बैठेंगे तो परिवार का प्रेम भी और बढ़ेगा।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 9:30 हो चुके हैं, समय है दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का। ईमेल बेस्ड कार्यक्रम है, जल्दी से भेजिए ईमेल और सुनिए अपनी पसंद के गीत। फिल्मों के नाम नोट कर लीजिए। फिल्में आज हैं हमारे पास संगीत, तुम बिन, कयामत, सागर और

अकेले हम अकेले तुम। दोस्तों, क्योंकि आज है 21 जून और आज का दिन बेहद खास है, फादर्स डे, योगा डे, म्यूजिक डे, जी हाँ बहुत से दिवस हैं आज। वर्ल्ड म्यूजिक डे की यदि बात करें तो आज का जो ये दिन है, संगीत की उस अद्भुत शक्ति का हम सम्मान करते हैं जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का की जो ताकत रखता है। संगीत की भले ही कोई भाषा ना हो दोस्तों, लेकिन इसे समझने के लिए आपको दिल से आवाज़ निकालनी होगी जो एक दिल से दूसरे दिल तक आराम से पहुंच जाती है। तो आइए आपके दिल की आवाज़ भी पहुंचाते हैं आपके अपनों तक, कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन में।

ईमेल हम तक पहुंची है, भेजने वाले हैं छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सुनना चाहते हैं संगीत फिल्म का गीत, जरूर सुनवाएंगे जी। सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने। अमरावती से आपकी ईमेल हम तक पहुंची है। संगीत फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं जलगांव जंक्शन से, डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। स्वागत करते हैं हम आपका भी कार्यक्रम में। आप ही के साथ ईमेल पहुंची है, भेजने वाले हैं तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, वामिका वाणी, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। आपने हमें मुल्तानी ठांडा से ईमेल भेजी है। मजनू का टीला से ईमेल आई है, भेजने वाले हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और एमपी से इनके साथ जो है शामिल है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, नसरीन अंसारी, राशिद हुसैन अंसारी, नौरानी अंसारी और आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। कुरावली से आपने हमें जो है अपनी ईमेल भेजी है। मध्य प्रदेश से ईमेल आई है, भेजने वाले हैं कालू सिंह बोडले, सीताराम हीरालाल, साहिल सुमन, विशाल हरिओम और भावना, नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुका बाई, नंदनी बाई और रुद्र राजपूत। एमपी से आपकी मेल हम तक पहुंची है। इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब, बिलराम से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर छत्तीसगढ़ से शामिल हुए हैं, प्रणय प्रतिभा, हीरामन, अर्चना ताई, सिद्धार्थ गोंडाने, इन्हीं के साथ नंदलाल, जी हाँ आपकी ईमेल हम शामिल कर चुके हैं, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। संगीत फिल्म का कोई भी गीत सुना दीजिए, उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। तो आइए आप सभी की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

आइए कार्यक्रम में अगली ईमेल शामिल करते हैं। भेजने वाले हैं हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंद्र कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। आप ही के साथ ईमेल आई है, भेजने वाले हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराट सिंह। एल आर गुंजेटा, जमिता गुंजेटा, अनुज मुकुल गुंजेटा, रोहड़ी, जी हाँ रोहड़ू छुपाड़ी शिमला से हमें ईमेल कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में हमारी पसंद का कोई भी गीत।

आप ही के साथ ईमेल आई है, भेजने वाले हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजना, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, उषा मोहन, अनिल मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, नारायण इंगले, सोपा।

0: तायडे, आशीष मुहर्रेकर, पीएस नवांकर, निर्मला नवांकर, विशाल नवांकर महाराष्ट्र से शामिल हुए हैं। पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा छत्तीसगढ़ से, आसिफ अली खान और मुस्कान आसिफ। बहुत सी ईमेल्स लगातार आ रही है, कोशिश कर रहे हैं नए ईमेल्स नए नाम शामिल हो सके। प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुजाता पोहरकार, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, जोगेशपुरी, डिंपल मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदनी, अंजलि और लुबना अंसारी मथुरा से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, आपका भी हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव कांकेर से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल, खुदा बख्श खलीफा, श्रोता क्लब। लगता है बहुत सारे दोस्त एक साथ मिलकर हमें मेल कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बात है। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: लंबी हो जाती है।
0: करनाल से सुधीर, जी हाँ सुधीर, नूतन, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, संदीप कुकलानी, जगमोहन प्रजापति, मीनाक्षी तिवारी, शशि बाला, आशा गुगलानी और बिपाशा शर्मा, इशप्रीत, साथ में इनका पूरा परिवार, आपका भी हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और तुम बिन फिल्म का ये गीत सुनिए।

दिल की आवाज़ भी सुन रहे हैं इस वक्त आप आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, राजस्थान से आपकी मेल हम तक पहुंची है। सिद्धार्थ गुंडा ने, जी हां, आपकी मेल शामिल हो चुकी है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, चंडीगढ़ से आपने हम तक ईमेल भेजी है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल आपके साथ शामिल है, शालिनी खेड़ा, वाणी और आरबी, जीवन सिंह, खिलौना फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं। दोस्त कुछ फिल्में लेकर आए हैं, उनमें से जरूर गीत सुनाएंगे और कोशिश करेंगे समय अगर हमारे पास रहा तो खिलौना फिल्म का गीत भी आपको ज़रूर सुनवाएंगे। राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, किशनगंज बिहार से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा एमपी से आपने हमें ईमेल भेजी है। उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक भी आपके साथ जो है वो कार्यक्रम में शामिल है। हरचिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता पंजाब से, कालू सिंह बुडाले, जी हाँ, आपकी ईमेल हम शामिल कर चुके हैं। आपके साथ है सीताराम हीरालाल, साहिल सुमन और विशाल।

0: रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, छत्तीसगढ़ से आपने हम तक ईमेल भेजी है। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, नसरीन अंसारी, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और शाकिर, बहुत सी मिस लगातार बार बार आ रही है। तो चलिए अब आपको गीत सुनवाते हैं और आनंद लेते हैं इस नगमे का, जो कि है कयामत फिल्म से।
1: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
2: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
1: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
2: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

सागर फिल्म के लिए हम तक ईमेल आई है, भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। प्रेम रोग विरासत राम लखन राजा हिंदुस्तानी इनके साथ शामिल है। छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल, चंपा के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय भाटापारा से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई खेड़ा से शामिल है हमारे साथ। और इनके बाद ईमेल आई है पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। आप सभी सुनना चाहते हैं सागर फिल्म का गीत। भटिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया परमिंदर और सजनूर मनिंदर, राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी हिसार से शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, यशस्वी वर्मा भी आपके साथ कार्यक्रम में शामिल है।

दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। संजय नमन और अपा ढिंग्या उत्तर प्रदेश से। उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत आयुष और नंदिनी झंगेल, अमित शकुन, आरुषि, उषिका आदित्य और अंजलि झंगेल।

राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सिरसा से आप जो है ईमेल हमें भेज रही हैं। आपके साथ ईमेल्स और भी आई हैं, भेजने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन। लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह। राजस्थान से आपकी ईमेल हम तक पहुंची है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ सोमदत्त, केरल ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु पटियाला पंजाब से आपकी मेल हम तक पहुंची है। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, आप सबका स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम में। पुष्पराज, ऋषभ, नेहा, हमारी कोशिश रही है कि सबकी ईमेल जो है वो शामिल हो सके। और कार्यक्रम के अंत में एक प्यारा सा गीत आज के खास दिन के लिए।

जी बिल्कुल जनाब, यदि जीवन भर आप भी अपने पापा से नहीं कह पाए हैं तो आज कह ही दीजिए कि पापा आई लव यू। उन सौभाग्यशाली लोगों के लिए आज का दिन जो है वो बेहद खुशी का दिन है जिनके पिता, जिनके पापा उनके साथ है, लेकिन जिनके पिता अब उनसे दूर है उनके लिए ये दिन सिर्फ यादगार का दिन है। पापा के दिए संस्कार, उनकी सीख और उनका स्नेह जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आप सभी को फादर्स डे की एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ, संगीत दिवस की और योगा दिवस की भी। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बने रहिए FM शिमला के साथ और इसी गीत के साथ दिल की आवाज़ भी सुन करके मैं बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। लीजिए पेश है कार्यक्रम में गज़लें। गज़लों का आगाज़ हम कर रहे हैं पंकज उदास की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

आशा भोसले और भूपेंद्र को आपने सुना गजलों में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मिताली सिंह की आवाज़ में पेश करते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

इसी खूबसूरत सी गज़ल के साथ गज़लों में आज बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला। दोस्तों, चलते चलते आप पहुंचे हैं उस खूबसूरत से पड़ाव पर जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सदाबहार नगमे। गीत कुछ ऐसे जो जब भी सुनो मन को भा जाए। तो आइए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नाराज फिल्म के इस गीत के साथ। मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की आवाज़ों में पेश है ये गीत।

साथी के साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा है जो सीधा दिल से जुड़ता है। जी हाँ, या यूं कह लीजिए कि तुम साथ हो तो हर राह आसान लगती है, सोनी सी दुनिया भी मेहमान सी लगती है। हर खुशी में सिर्फ नाम है तुम्हारा शामिल, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहचान लगती है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ललकार फिल्म का ये नगमा।

बेहद ही प्यारा गीत आपने सुना आकाशवाणी एफएम शिमला पर सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम में अगला गीत पेश करने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म से। गीत के बोल मजरूह के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नील कमल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: तुझको।
1: इसी गीत के साथ आज के सुहाने से सफर में बस इतना ही। आज का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो हम सफर रेखा ठाकुर के साथ। चलते चलते बस यही कहेंगे, खुश रह कीजिए, अपना ख्याल रखिए। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 11 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। बने रहिए एफएम शिमला के साथ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक

और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मूज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।